0: मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा

0: साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिन्दुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ टी20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना इतनी भी क्या जल्दी थी
2: अरे
1: और छोटी ये तुम्हारे ना
2: और ये मेरी गुड़िया के नाम
3: दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
1: शुभ शुभ बोलो क्या
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखिए समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
8: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं कृष्णा जी नमस्ते
9: नमस्ते सर नमस्ते
8: भाई मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ
9: धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर

0: था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
0: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनालिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनालिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली, एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश

0: लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टैटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे हम, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप।
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है।
2: साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे

का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्य पर तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई।
वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी
उनकी आजीविका का माध्यम बन गया है।

साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं।

समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने YouTube से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने
अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की।

0: साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి చేసిన మన్ కీ బాత్ ప్రసంగానికి తెలుగు అనువాదం వింటారు.
4: ప్రియమైన దేశవాసులారా, నమస్కారం. మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఈ కొత్త ఎపిసోడ్లోకి మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను. మన దేశవాసుల విభిన్నమైన కృషిని ప్రదర్శించేందుకు, వినూత్నమైన ఆలోచనల్ని ఆవిష్కరించేందుకు, చర్చించేందుకు ఈ మన్ కీ బాత్ ఒక వేదిక అని మీ అందరికీ తెలుసు. అయితే ఈ ఆలోచనల్లో చాలా వాటి వెనక తమ జీవితకాల శక్తిని ధారపోసిన ప్రజల శ్రమ ఉంది. ఉదాహరణకి ఒక విషయం చెబుతున్నాను, అది కృష్ణగారి వెబ్సైట్ గురించి. ఆషాఢ ఏకాదశి పవిత్ర సందర్భంగా చరిత్రను ఆసక్తిదాయకంగా మార్చే నా ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను అని మీకు తెలియచేయటం నాకు

0: योजना
1: पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी, फूल दिए अगरबत्ती नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place.
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: Mr. Modi said today the flight of the country's daughter's dreams is soaring from the earth to the outer space. He said India is bringing together thousands of daughters who are nurturing such dreams from across the globe. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat, and through it 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: Mr. Modi spoke to Krishna Sheshadri from Mumbai, who has created a unique website, www.bharatraja.com. By selecting any year in the website, people can easily find out which ruler ruled over which part of India at that time. He said this initiative by Mr. Krishna will help not only the history students, but also the people to learn about the past in an engaging way. The Prime Minister said the month of August brought with it myriad hues of patriotism all around. He said occasions such as National Handloom Day and the anniversary of the Quit India Movement to Partition Horrors Remembrance Day make this month very special.
1: अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है।
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The death toll from flash floods in central Nepal has risen to 734 today, with more bodies being recovered. Nearly 2,500 people are still missing following the disaster. Bodies have been recovered from all 8 affected districts as rescuers race against time to search for those missing and rescue those stranded on the 5th day since the disaster. External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following the flash flood tragedy. In a social media post, Mr. Jaiswal said contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. The External Affairs Ministry said that 275 Indian nationals are reportedly missing and around 128 people of Indian origin holding other nationalities also remain missing. India has provided 68.5 tons of relief materials to the flood-hit Nepal.

0: आकाश।
1: अच्छा, इसका मतलब तुमने
2: नाटक किया था।
1: चाचा जी आप भी।
2: बच्चों, इस नाटक से तुम ये सबक ले लो कि औरतों का मन जीतने के लिए नाटक करना आना चाहिए।
3: ये मिठाई वाला है, जरा शौकीन मिजाज वाला है, वे खोल दो ये पैकेट और सबको जलेबी लड्डू बांटकर पार्टी बना लो।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का दूसरा और अंतिम भाग। इस नाटक के मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है।
1: चाचा जी को क्यों पुकार रही हो? रोना ही है तो मन में रो, मन में रो। देखो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, हैं? ये लो रुमाल से आंसू पोंछ डालो। अच्छा मैं ही पोंछ लेता हूँ। आइए आइए चाचा जी।
0: मनोहर अजय कश्मीरी।
2: चलो सोफे से नीचे उतरो।

0: लगता है तुम सब पागल हो गए हो। मैंने इस मतलब से नहीं कहा था कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
1: रेखा, कामिनी कौशल,
2: मैंने तो केवल लकड़ी जलाई थी, आग तो तुम ही ने सुलगाई।
3: अरे ये सब कहाँ चले गए भाई?
2: अंदर है।
3: क्यों?
1: लीना, भारती कानड़े,
4: शांति मोटर्स, आई एम वीरेंद्र मेहता स्पीकिंग। अरे भाई मेरी कार का क्या हुआ? हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड तो मैं आपको पिछले हफ्ते ही दे गया था, देखिए। हाँ हाँ, व्हाइट, ऑफ व्हाइट कलर, लीना ने आपसे कहा था ना।
1: वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह,
5: नादान नहीं, तुम तो अकल की दुश्मन हो। हर तरह से समझाया लेकिन समझती ही नहीं, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं कह देता हूँ, किसी भी अर्थ में कह दो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, नहीं तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म समझो।
1: जगमोहन, राजदीप,
6: जाओ जाओ रहने दो, तुम दोनों ने तो अपने मन से ही लगा लिया था, जीत की झूठी डींगे हाँक रहे थे, इन दोनों ने तो जनरल बात कही थी, तुम दोनों के लिए नहीं कहा था।
5: अरे
1: रमा लक्ष्मी शर्मा,
5: आना चाहिए।
1: और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानड़े। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
7: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
8: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
7: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
8: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
7: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
8: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
7: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
8: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: कुछ दिल ने कहा,
8: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
10: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
8: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
10: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
9: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
8: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
10: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
8: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
10: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
8: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
9: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
8: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
9: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
8: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी याद

0: के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका तीसरा भाग।
1: मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा। अगर नहीं आता है तो आई विल रिजेक्ट एंटायर माय ट्रेनिंग एंड फाइंड आउट समथिंग एल्स। तो मुझे किसी भी फॉर्म को इमिटेट, अनुकरण नहीं करना है, किसी भी फॉर्म से ये लेके, वहां से ये लेके, वो लेके कुछ गुलदस्ता बनाना है या खिचड़ी बनानी है। सबका आदर करते हुए मैंने ये तय किया कि मुझे मेरी कहानी के लिए नई तरीके की रंग भाषा खोजने की सोचनी पड़ेगी।
2: गजब।
1: कोई ये ना कहे कि मूवमेंट वहां से लिया, कोई यह न कहे कि कॉस्ट्यूम वहां से लिया, कोई ये न कहे कि म्यूजिक यहां से उठाया, लाइटिंग वहां से उठाई, ये कुछ मेरे नाटकों पे आक्षेप नहीं पाना चाहिए। इसलिए पहला मैंने टेस्टिंग ग्राउंड जो तैयार किया वो था झुलवा।
2: जी, जो आप वहां से लौट के आते हैं।
1: जो मैं वापस से लौट के आया और दो तीन साल यहां का व्यावसायिक नाटक सीखा मैंने, वो भी रह गया था मेरा सीखना।
2: जी,
1: व्यावसायिक नाटक कैसे होता है, टूर कैसे होते हैं, हर शो ऑडियंस के साथ कैसे बदलता है, उसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट एक्टर के हैसियत से काम किया 200-250, जिसमें लक्ष्मीकांत बेरडे से लेके वर्षा उसगांवकर से लेके सारे एक्टर थे।
2: ये एनएसजी से लौटने के बाद
1: मैंने 3 साल के बाद नाटक किया। अच्छा। मुंबई में आने के बाद तो पहला जो झुलवा मैंने किया वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड था, वो बर्निंग इश्यू है।
2: जी बिल्कुल।
1: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है, क्या कहते हैं, जोगते जोगतीनी कम्युनिटी है, वहां पर जो लोग मन्नत मांगते हैं यिल्लम्मा गॉडेस से कि मेरा ये होने दो, पहली जो बेटी होगी मैं तुझे दान कर दूंगी, और उससे जो कम्युनिटी तैयार हो गई है वो है देवदासी। देवदासी का ही एक अलग रूप है, टेम्पल की देवदासी अलग है, ये ग्राम की सर्विस सेंटर है वो। मतलब देवदासी जो जोगतीन है उसके पास कोई भी पुरुष अगर उसके दरवाजे पे दस्तक दे तो वो किसी भी पुरुष की सेवा करना उसका काम है। वो मना नहीं कर सकती। उसकी उम्र क्या है, उसका गुलिया क्या है, उसका पलाना, वो कुछ नहीं, सी हैज टू बी देयर फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। तो ये इश्यू को लेके मैंने नाटक करने की ठान ली। ये उपन्यास था उत्तम बंडू तुपे, एक सिपाही के हैसियत से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में पुणे के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ये लिखा था उपन्यास, और इस उपन्यास पे मैंने काम करने की बात ठान ली। और पहला ही नाटक जो संगीत नाटक अकादमी के किसी एक स्कीम के लिए, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स के लिए मैंने किया, और उसका ओपनिंग शो भारत भवन भोपाल में हुआ।
2: वाह वाह।
1: 10 अक्टूबर 1987।
2: गजब।
1: इसलिए भारत भवन का मेरा रिश्ता अलग है।
2: जी जी।
1: तो वहां पर ये पहला शो हो गया, और वहां पर कारण जी से लेके, अशोक वाजपेयी से लेके, ऑल हुज हु ऑफ इंडियन थिएटर वो नाटक देखने के लिए थे, और वो पहला ही शो हमारी पहली रन थ्रू थी।
2: ओहो।
1: पर वो जो गजब का शो हुआ है, उसके बाद हमने 400, 450 जितने भी शो किए होंगे उससे बेहतर शो नहीं कर पाए।
2: सयाजी शिंदे थे,
1: सयाजी शिंदे, सुकन्या कुलकर्णी, आदिति देशपांडे, गौरी केंद्रे, आशा शेल, अरे सारे लोग थे।
2: वाह।
1: भारत तांडेल, तो ये सारा 42 एक्टर स्टेज पे थे, फिर बैक स्टेज में 7-8-10 और थे। तो ये मुझे लगा कि वो पहली बार ऐसा सिद्ध हुआ कि नहीं यार, ये कहीं से कुछ नहीं लिया है उनका, कोई ना आपका म्यूजिक है ना डांस है, जो जैसा उसका अंग चलन होगा वैसा वो नाचता है। तो फिर सयाजी का जैसा अंग चलन था सयाजी नाचता था, सुकन्या का जैसा था वो वैसा नाचती, तो कुल मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक बर्निंग ज्वलंत समस्या है आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने। हर साल कितना भी कानून किया जाए तभी 2-2.5 हजार बेटियां भगवान को चढ़ाई जाती, समर्पित की जाती है, और फिर उनका भविष्य किसी को नहीं मालूम। तो वो नाटक का पहले शो से लेकर निरंतर हर शो में पूरा हंगामा जहां हुआ नामदेव ढसाल जो मेरे बहुत अजीज दोस्त

0: दोस्त वो पहली बार जब देखने आए उन्होंने देखा नारायण सुर्वे, देखा अपूल देश पांडे, जितने भी महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने वो नाटक नहीं देखा
1: जी।
0: या इवन देश में भी हर जगह वो चला गया। तो नामदेव ढसाल ने मुझे फोन किया कि मुझे तेरा नाटक देखना है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, आइए। तो मुझे लगता है रविन्द्र नाट्य मंदिर में आए थे वो। वो जब देखा उन्होंने तो वो खुद रोते हुए अंदर आ गए बैक स्टेज में
1: जी,
0: और उन्होंने गले लगाया और बोला कि तूने तो मेरी ही कहानी यहाँ मेरे सामने रखी है। एंड ही वाज इन टीयर्स
1: जी।
0: उन्होंने उसके बाद भी 14 शो देखे, हर बार वो उसी माइंड सेट में आते थे। उन्होंने उसमें से कुछ शो इंटरनेशनल कोई साहित्य का करते थे उसमें लगाया, माधव गडकरी और दया पवार, और इन्होंने एक जागतिक मराठी परिषद हुई उसमें वो जानबूझ के शो रुका हुआ था तो करवाया। तो ये था कि उन्होंने एक वाक्य जो कहा तो मुझे बहुत पसंद आया, जो बहुत फेमस भी है, नामदेव जी ने जो कहा कि हम दलित पैंथर लगभग 35-40 साल होने को आए थे जो भी, कि जो इतना नहीं कर पाए ये नाटक उससे 2 कदम आगे चला गया।
1: वाह क्या बात है, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: पु ल देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजली बैक स्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। मैं गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पु ल देशपांडे, क्या कहते हैं हमारे सबके आदर्श
1: जी,
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं

0: ना उनकी पत्नी मिसेस देशपांडे वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: सोने ही नहीं दे रहा है तुम्हारा नाटक। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज नहीं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है, 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि तुमने एक भारतीय रंगमंच पे एक नई रंग भाषा का नया आइकॉनिक एग्जाम्पल पेश किया है। तो ये सारा का सारा कहने का तात्पर्य इतना था कि जो मेरा चिंतन था या मेरी सोच थी कि मुझे कोई भी फॉर्म से कुछ भी उधार नहीं लेना है,
1: अपनी धारा बनानी,
0: मेरी धारा बनानी है। और वो देखने के बाद, समझने के बाद, उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को ये लगना चाहिए ये भारतीय है।
1: जी,
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये चाहे वो गजब तेरी अदा या गजब तीचे अदा देखने के बाद की विमेन अगेंस्ट वॉर वो नाटक था।
1: जी जी।
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ किया हुआ विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑडियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम पुरुष, तबला पुरुष, ढोलकी पुरुष, ढोल पुरुष, जितना भी है।
1: फिर
0: घुंघरू एक है, पर घुंघरू औरत ने खुद नहीं पहने हैं, वो भी पुरुष ने अपने जाने के लिए उसके पैर में बांधे हुए है। तो मैंने कहा ये भी तो नहीं हो रहा है
1: जी,
0: फिर क्या होगा। तो मेरी पत्नी गौरी केंद्रे घर में किचन में ये कोई उनका छोटा सा एक भगवान के 2-3 ये रखे हैं, उन्होंने अपना आरती कर रही थी, तो छोटी जो घंटी है हाथ में लेके टिंग टिंग टिंग कुछ सुनाई दिया और वो क्लिक हो गया, यार जिसकी मैं खोज कर रहा था शायद यही है।
1: वाह।
0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं। तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया, और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटियां देके हमने दिन भर बजवाया। और हमें लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है,
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है, और वो कहानी बता रही है वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह।
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है, और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज है। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से हुआ, झुलवा में अलग था, जाने मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था, जो NSD रेपेटी ने, उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है। मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा मुझे एक बात बताइए, झुलवा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी जो आपको रोक रही थी?
0: ज्यादा था। मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूँ, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने, मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया, पर इसको जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस आते थे, सब इसने दांव पे लगा दिए, अब आगे क्या करेगा ये, आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना, बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो, तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर 1 साल के बाद एक झुंझवारिया से नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुल देशपांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया, और वो देखने के बाद लोगों को लगा ये और कुछ है यार। फिर 2-4-5-10 नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले नहीं यार, उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
1: वाह वाह वाह।

0: वामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही हैं। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
1: जी,
0: तो भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
1: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
0: जी,
1: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था
0: जी,
1: वो देहाती लोग थे वहां के।
0: जी जी बिल्कुल,
1: खासकर तैयम, मुड़ियेटू और पड़ेनी। मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठेठ जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम स्टैंडर्ड, जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे। उनकी अपनी एक बोली डायलेक्ट होती थी मलयालम की। तो इनसे कैसे निपटाया जाए? पहले 4 महीना तो हर दिन तकलीफ होती थी, मैं और मेरा एक मित्र था, मेरा क्लासमेट हरेन भट्टाचार्य, क्योंकि वो इतनी दिन भर मलयालम या साउथ इंडियन भाषा सुनने की आदत नहीं थी
0: जी।
1: मुझे भाषा तो भाषा होती है, उसका अनादर करने की कोई बात नहीं है, पर आपके कानों को वो भाषा सुनने की आदत ना हो और दिन भर केवल मलयालम मलयालम मलयालम, और वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, तो ऐसा लगता हर दिन शाम को सर में दर्द होने लगता था, वो फोनेटिकल एक्सपीरियंस कानों को ना होने की वजह से। तो वाकई हम उसकी तकलीफ झेल रहे थे कि क्या किया जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी चाय वाले के पास, कभी हमारे जो साथ में काम करती थी, जो हमारी दुभाषी जो थी, वो महिला से हम एक एक एक एक एक एक शब्द, या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी 2-3 वहां के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के, तुम्हारा नाम क्या है, फलाना क्या है, जो डे टू डे लगने वाली भी 10-20 लाइनें रट लिए, याद कर लिए। और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की, और खासकर जिनका मैंने

0: थोड़ी देर पहले वर्णन किया, वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी वो हमारे साथ रहती थी, वो दो रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सबकी अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था। तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो हर बार चार चार पांच पांच दस दस सेंटेंस, तो हमने ये तय किया था कि एवरीडे 10 वर्ड्स नया सीखना है फोनेटिकली, मतलब उच्चारण के तौर पर। और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से। पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी। तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हम कहीं कैननोर में, गांव में, कैननोर जिला है उसके, गांव में तैयम देखने गए थे। और शाम को हम खाना वाना खा के, जो हमारी दुभाषी लड़की थी उन्हीं के घर में, उन्होंने हमको बहुत अच्छा मलयालम व्यंजनों का खाना खिलाया और हम चल पड़े बस पकड़ने के लिए। हमको जाना था कैननोर, हम कैननोर में होटल में रुके थे। तो चलते चलते आप आके वो छोड़ के चले गए सब उनके घर वाले, और एक होटल वहां एक छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था। तो उसको हमने मलयालम में, टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैननोर में आने वाली बस है जाने वाली यहाँ से, वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो उसने हाँ ऐसे कह दिया और वो अपना काम में लग गया। एक बस आ गई, दूसरी चली गई, कोई इधर से आई, कोई उधर से आई, और एक बस आई और वो चली गई। तो ये सब पतेले बर्तन समेटने लगा। तो हमने कहा कि तुम क्यों समेट रहे हो, हमारी बस कहाँ है, कैननोर जाने वाली बस कहाँ है? तो उसने कहा वो पोई,
1: मतलब गई
0: गई वो चली गई अभी, अब वो लगभग 1 फरलांग दूर चली गई थी। तो हम भाग के भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। तो बड़े हम निराश हो गए, डिप्रेस होने की स्थिति आ गई कि ये क्या है यार। मैं इसको समझाया तो शायद वो समझ नहीं पाया होगा ढंग से। तो अब क्या किया जाए, कहाँ रुके, रात को 9:30-10 बज गए और गांव में देहात में 9-9:30 बजे तो मध्य रात से ज्यादा हो जाता है। अब जाए तो कहाँ गए? तो मैं और हॉरेन, हमारे पास कैमरे होते थे, दो दो टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था। केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे। अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहाँ, यहाँ तो रुक नहीं पाएंगे रात भर। तो चलो जहाँ जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते, वो 3.5 किलोमीटर दूर था वहां से, और वो भी भात की खेती से, पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते, ज्योग्राफी ढूंढते वहां तक जैसे तैसे पहुंच गए। तब 11:30 बज रहे थे
1: और चावल के खेत तो गीले,
0: चावल के खेत तो गीले होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे।
1: वाह।
0: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते हैं ना फ्लावर्स।
1: जी जी।
0: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा यार ये लोग क्या समझेंगे,
1: क्योंकि उनकी आधी रात हो,
0: वो तो हम निकलते ही सो गए होंगे।
1: जी।
0: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका। तो गीता को बोला सॉरी गीता यार ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव, तो ये लास्ट बस वाली हमने उसको बोला और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई,
1: बस पोई।
0: तो बोली अब क्या करोगे? तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये वरांडा है इसमें हम रुकेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाऊं, कॉफी बनाऊं। मैंने कहा कुछ मत बनाओ। तो मैंने कहा एक ही अगर आपको मदद करनी है हमको तो ये काम करो, 1 घंटा आपकी जिंदगी का दे दो और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई और मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया तो मैंने 1.5 घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था एनएसडी वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा। मुझे गुस्सा आया, वो बस चली गई क्यों, कि हमें लिपि नहीं आती। क्योंकि केरल में जितनी भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर में लिखता रहा, वो क्या है, वो क्या है,

0: और पहला नाम लिखा वामन, मुझे याद है अभी भी।
1: वाह वाह।
0: और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया, और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना। इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची, और हम ऐसा कैसा एक दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा, फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना, ट्रेन में जाए बस में जाए जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाता था। और फिर जब कैनोनर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
1: अच्छा।
0: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया, ताकि वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
1: वाह वाह।
0: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा, और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ रही।
1: सुंदर बात।
0: और ये ऐसा अब मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
1: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
0: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गांव से मैं निकला हूँ और जो आपके सामने बैठा हूँ, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती।
1: जी बिल्कुल।
0: यहाँ तक आना, और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है, अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है।
1: जी,
0: उसकी तलाश में है तो ढूंढ रहे हैं।
1: जी,
0: यही बात है। वो
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: आपके नाटकों की बातें चल रही थी, वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ और मैं उस चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ जीवन के जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहाँ आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहाँ आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात होती है।
1: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ। तो मैं यहाँ जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, मेरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
0: जी।
1: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो वो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
0: जी।
1: तो वो एग्जीबिशन रतन थियाम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
0: जी।
1: तो उन्होंने एक डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लो अप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
0: वाह वाह,
1: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलकाजी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलकाजी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है। तो खैर कुछ दिनों बाद अलकाजी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलकाजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलकाजी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलकाजी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कहीं जगह जहां उनकी सिटीजनशिप है वहां गए थे। तो गया मैं, जब उन्होंने बुलाया तो उस समय वो सारे एल्बम तो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, एक एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलकाजी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से, उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी, उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलकाजी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने, और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स है, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
0: जी।
1: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहाँ आ गए तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमें क्या काम मिल रहा है, तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे जिसमें गौरी पढ़ते ये भी

0: विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा। और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया, वहाँ के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, तो वहाँ कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई अमन केंद्र हैं और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले हैं एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
1: दुबले पतले वामन
0: दुबले पतले वामन केंद्र, बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
1: जी,
0: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
1: दाढ़ी वाड़ी थी
0: थोड़ी बहुत
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
1: जी।
0: तो कुछ लोगों ने ये तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
1: जी,
0: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है,
1: ओके
0: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, वो हो गए, सब चले गए और क्लास शुरू हो गई। और 1-1.5 घंटे के बाद वो क्लास रुक गई। तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहाँ केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था, जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा छिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था। तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का, और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था
1: बिल्कुल।
0: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो। तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं।
1: ये बात
0: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो, और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी, कुमारी थी, वो कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्रे हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की। मतलब जीनियस लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं।
0: क्या हो गया कि हम वो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था, और वहां से मुझे फिर शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी। तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूँ, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, 1.5-2 घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा, या जैसे भी हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविन्द्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी, तो मैं तो चला गया कहां, रविन्द्र नाट्य मंदिर, और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो 1-2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, उसके बाद अचानक रविन्द्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए।
1: ओके
0: तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्रे थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब। तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या किया, मैंने कहा क्या किया, नहीं आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे, और मैंने कहा मैं भूल गया।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूँ।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है, मतलब क्या है ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान, अपना नहीं कि दूसरों का?
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से, कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया। तो मेरा जो साइन है वो जो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो जो सबसे अच्छा है,
0: जो सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप?
0: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
1: हूँ भगवान।
0: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती उरती उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है। उनकी मार्केटिंग के लिए है ये, रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
1: जी।
0: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहाँ बर्थडे होता है उसको कहाँ मालूम है। था मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, रिक्के रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहाँ के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया, वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वराला होता,
1: लो
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों को पकड़ने का, जकड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना, सप्तर्षि,
1: चलो
0: उसको गांव की भाषा में तिकाट न बोलते हैं, वो तिकाट न कासरा भर वर आलेले होते। अब वो उसको भी काम आता ज्योग्राफी कब कितना कहाँ ऊपर आया, उसको जो लगेगा वो इम्पल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
1: जी।
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी। इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इम्पल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी?
0: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
1: गजब।
0: तो मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है
1: जी, जी।
0: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जिनको एस्ट्रोलॉजी में, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की, घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषा काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो

0: ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
1: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी,
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है, उनको मैं बोलता हूँ एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो।
1: अरे भगवान,
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
1: जी,
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माताजी को पिताजी को जो भी है, तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगले जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
1: जी,
0: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ।
0: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे पहला टैब बोला तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है।
1: जी जी जी,
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगिनी होंगी?
0: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ और उसमें आधे से ज्यादा रो रहे थे, पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए।
1: ओके
0: तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, इतने दिन का, महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे, आप रुकेंगे तो फिर मैं उतरा, वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे।
1: अरे कैसे?
0: और फिर मैं रुका और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
1: वाह।
0: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ते जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूँ।
1: ओहो हो।
0: और मैं करियर करना चाहती हूँ नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को, पर वाकई वो जब एक दिन आपके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूँ सर।
1: अरे बाप रे।
0: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में, रबा ले वहां रहती थी और वो हर दिन जाती आती थी, तो मैंने देखा साल हो गया, 2 साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं, रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी, ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया, मेरे घर में कि माताजी पिताजी चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी पिताजी और उसकी बहनें तो यहाँ, लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए, तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त साबड़े हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में,
1: अरे
0: स्टूडियो नंबर 1 में।
1: ऐसा क्यों?
0: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले, हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहाँ होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले, तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कई शादी है, मैं वहां जा रहा हूँ, वहां से पिकअप करने आऊ। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर 1 में,
1: और दूल्हा,
0: हाँ दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है। मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
1: जी,
0: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
1: जी,
0: वो और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहाँ आया ही नहीं है।
1: अरे
0: हम वहाँ 1 घंटा इंतजार कर रहे, 2 घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे।
1: लो
0: अब उनको कहाँ ढूंढे, 2-3 घंटा हो गए हम यहीं ढूंढ रहे, इस गली में उस गली में, यहाँ इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आए ही नहीं वो रजिस्ट्रार। तो अब करे तो क्या करे। अच्छा तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया चलो यार रिक्शा में बैठो और जो वहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माता

0: माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें, क्या ये तुम्हारी अपने मन की कुछ धारणाएं थी? तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है, वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा को फोन किया, यार रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है, वहां देखो कहीं आया वो। तो वहां पहुंचे हम, तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहाँ है। अब शादी करे तो कैसे करे? कोई दो मालाएं लाई थी
1: जी,
0: जो उन्होंने मोपलवार जी ने, तो वो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए? तो किसी ने बोला नहीं, वो रजिस्ट्रार आया हुआ है कोई एक आदमी, अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो। तब तेजाब की शूटिंग चल रही, वो वहां पर बैठा हुआ है, वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बुनसुड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी।
1: वाह वाह।
0: माता पिताजी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन, उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
1: हो गई शादी।
0: 42 रूपये में हमारी शादी हो गई।
1: वाह वाह।
0: 42 रूपीज।
1: जी जी,
0: वो रिकॉर्ड है दुनिया का।
1: दुनिया की सबसे सस्ती शादी।
0: और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मुपलवाद की फैमिली थी, और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मुपलवार जी ने, वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठल झुनका खेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माताजी पिताजी चाचा जी बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का। तो बोले आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो।
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारे एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब। ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब का गाना बनता है।
1: ये गाना सुनते हैं।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव

0: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देशभर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे, 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership, marking a significant step towards in ties between the two countries. Both sides also signed several memoranda of understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors. These include mining, Ayurveda, tourism, economic and financial dialogue, higher education and environment. India and Uzbekistan also agreed to set an ambitious target of $5 billion in bilateral trade by 2030. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his opening remarks, Prime Minister Modi said the elevation of ties is expected to provide a renewed framework for expanding cooperation between New Delhi and Tashkent across various sectors.
0: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
1: इस अंक में श्री राम भारती कला केंद्र द्वारा आयोजित नृत्य नाटिका कृष्णा का मंचन और कला प्रदर्शनी। 29 अगस्त से 4 सितंबर तक मंडी हाउस स्थित कमानी सभागार में श्री राम भारती कला केंद्र द्वारा कृष्णा एक नृत्य नाटिका का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के संदर्भ में आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में श्री राम भारती कला केंद्र की चेयरपर्सन शोभा दीपक सिंह ने बताया,
2: हमने शुरू किया था कृष्ण जन्म से हर साल, और जिससे कि स्टेज के जो दोनों तरफ दो पैनल लगाए और स्टेज में जितना भी डायलॉग गीत हिंदी में है दोनों साइड में पैनल है, जिसमें उसी का अनुवाद अंग्रेजी में भी है। आगे देखें और अपने आप डिसाइड करें, पर एक बार देख लेती है तो सोचते हैं कि हर बार देखें। और अपने बच्चों की तरह
1: प्रस्तुत है कृष्णा नृत्य नाटिका मंचन।

0: भारत थाईलैंड दले परस्परं सम्मुखी भविष्यतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30+2000 वर्षं यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यत् हि साम्प्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्मानमपि अलभत। इदं सम्मानं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकन्द नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोयेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिय दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्मानः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ सम्बन्धेभ्यः समर्पितः। श्रीमोदी अवोचत् यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवम् अनुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थमग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेफ इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निज सम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणा समन्वय समितेः घटना विधास्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् विकसित भारताय मादक मुक्त युवाभियानं कृत्स्नेहि देशे द्रुतगत्या संवर्धते। अद्य प्रातः आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे स्वविचारान् उपस्थापयन् श्रीमोदी सन्तोषं प्राकटयत् यत् व्यसनमुक्त युवकानां मादकमुक्त भारतस्य च लक्ष्ययुक्तम् इदम् अभियानं केवलम् औपचारिकं नास्ति, अपि तु बहवः जनाः विशेषतः युवानः महत्या संख्यया अस्मिन् संयुज्यन्ते।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: प्रधानमन्त्री न्यवेदयत् यत् मादकद्रव्य व्यसनं केवलं एकं जनं न ग्रसते, अपि तु समग्रः परिवारः समाजश्च अस्य दुष्परिणामान् भुङ्क्ते। सः तेषां सर्वेषां भूरिशः प्रशंसां कृतवान् ये मादकविरोधि जागरूकतां प्रसारयन्ति अथ च मादकद्रव्येन पीडितानां सहायतायै अग्रे आगच्छन्ति।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमन्त्री अवदत् यत् पीएम स्वनिधि योजना माध्यमेन लक्षशः महिलाः नूतनं सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति। सः अकथयत् यत् महिला सशक्तीकरणस्य अस्मिन् उपक्रमे यावती चर्चा भवेत् तावती न दृश्यते। श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् पीएम स्वनिधि योजनायाः लाभार्थिषु प्रायः 46%मिताः महिलाः सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् स्वच्छतायां बहवो गुणाः भवन्ति। सः अवदत् यत् यदा कस्यचित् स्थानस्य स्वच्छता संकल्पः जनसामान्यस्य स्वकीय संकल्पः भवति तदा सः तस्य स्थानस्य समग्र स्वरूपमेव परिवर्तयति।
1: देश

के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे

0: ये आकाशवाणी है।
1: विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड ऑफ द विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। Before that, listen to a special program, First Ball 20.
3: First Ball 20.
4: Having crashed out of the group stage of the T20 World Cup, nothing less than the title would be the target as India start their campaign in the Asia Cup against Thailand. Hello and welcome to First Ball 20. I am Megha and joining me in the studio as my co-host is Gautam.
0: वेल एशिया कप और निगाहें जरूर रहेंगी बिकॉज अगर विमेंस क्रिकेट की बात करें तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है और आज का ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है बिकॉज एक तरफ है थाईलैंड और दूसरी तरफ है भारत और मेरा साथ देने के लिए हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं दो ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। फॉर्मर विमेन इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी हमारे साथ है एंड एक वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार हमारे साथ हैं मिस्टर राकेश थपलियाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। ये मुकाबला कितना अहम होगा सबसे पहले हम बात स्ट्रक्चर की भी करेंगे
4: और इस बीच टॉस के लिए दोनों कप्तान तैयार हैं, चलते हैं टॉस पे।
5: टेल्स इट इज कांग्रेचुलेशंस थाईलैंड, यू वन द टॉस, व्हाट्स योर डिसीजन एंड व्हाई?
6: वी डिसाइड टू
7: बॉल फर्स्ट।
5: डिपार्चर, इफ आई कुड रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड, वेल यू आर बॉलिंग फर्स्ट, what sort of a target would you be looking to restrict India to?
6: Yeah, I think not more than 120. Yeah.
5: Tell us a little bit about your designated captain Narumal Chaibai, who is out injured. What's the injury status like?
6: She a bit injured, yeah.
5: Your expectations from this match? You're playing India after 4 years. Excited?
6: Yeah, we excited and we happy, yeah.
5: All the very best.
6: Thank you.
5: And that was the stand-in skipper of Thailand. As in comes Harmanpreet Kaur, captain of India. Had you won the toss, what would you have done?
8: Well, we also thought to bowl first, but I think batting first is also not a bad option.
5: Now that you're batting first, what's a good total to put on the surface?
8: Well, I think we are playing a first game and in Dubai after a long time. So I think other than keeping a lot of things in mind, just go there and execute.

0: good and see how we finish the inning.
1: Well, there is no Jemima Rodrigues in your squad, one of the proven performers at the Asia Cup. What's your starting 11 looking like for today?
0: Yeah, today Pratika is going to make her debut because Jemima is not there, and we need to see somebody who has already got experience, and let's see how she is, you know, approaching the T20 side. And yeah, she's going to debut today.
1: And going into this tournament opener, what are your expectations as you look to regain that title?
0: Yeah, I think playing a good cricket is first, you know, thing which is in our mind. And I think we already spoke, you know, being ruthless, playing best cricket and, you know, giving our best. And because this is a very important tournament for us, and we have to get our confidence back in T20.
1: Go well, Harman.
0: Thank you.
1: Well, the toss is done and dusted. And the news from the center is Thailand have won the toss and decided to bowl first.
2: थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और जैसा कि कप्तान ने कहा नारुमोन चाइवाय ने कहा कि 120 पर रोकना चाहेंगे मतलब T20 का महासंग्राम है कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है अनिश्चितताओं का ये खेल है लेकिन ऐसे में सबसे पहले राकेश जी से पूछना चाहूंगा मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करें दोनों टीमों के थाईलैंड वर्सेज इंडिया चार साल बाद आई थिंक आमने सामने हो रही है टीमें और T20 में इतिहास गवा रहा है कि डोमिनेट करता हुआ भारत नजर आया
3: देखिए बिल्कुल सही बात है भारत की टीम कोई भी थाईलैंड के साथ मुकाबले में दिखेगा तो ये मानेगा कि भारत का पलड़ा भारी है लेकिन T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसके अंदर किसी भी टीम को आप हल्का करके नहीं आ सकते हैं और थाईलैंड की टीम को एकदम मैच से पहले ही इस मुकाबले से पहले एक झटका लगा है कि उनकी कप्तान जो है वो चोटिल होने के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रही है जो स्टैंडिंग कैप्टन है थिपचापा पोतेगोंग वो एक बड़ी मतलब अच्छी क्रिकेटर हैं उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और जो उनका क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें बहुत सक्सेसफुल रही थी 16 विकेट उन्होंने लिए थे तो आज कप्तानी का भार शायद उनको दिया गया क्योंकि टॉस करने वो आई थी तो पहला झटका तो थाईलैंड को लग गया है लेकिन अब टॉस जीत के उन्होंने जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास एक मौका रहेगा बल्लेबाजी हमारी थोड़ी डावाडोल चली रही है T20 के अंदर तो देखते हैं कि किस तरीके का उनका फायदा उठाते हैं क्योंकि ऐसी टीम जिसके साथ आप ज्यादा खेलते नहीं आपको बरसों बरस हो जाते हैं उनके साथ खेले हुए उनके खिलाफ खेलना थोड़ा सा एक वो रहता है कि कैसे बॉलर होंगे उनके किस तरह का वो करते हैं तो देखते हैं कैसा करते हैं उम्मीद है कि अच्छा करेंगे बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे 170 तक तो रोकने की बात थाईलैंड की कप्तान ने कर ही दी है तो मुझे लग रहा है कि आज मौका है 200 के ऊपर जाना चाहिए
4: बिल्कुल और इसके अलावा प्रतिका रावल आज T20 आईज में अपना डेब्यू करने वाली हैं ओडीआईज में शानदार प्रदर्शन रहा है उनका नंबर 3 पर लगता है कि बल्लेबाजी करने आएंगी या फिर
5: देखिए मुझे लगता है सिलेक्टर्स ने कोई ना कोई भरोसा दिखाया होगा उन पर और इसीलिए उनका सिलेक्शन जो है इस एशिया कप के लिए किया है और मुझे लगता है कि जिस तरीके की प्रतिभा वो रखती है हमने वनडे वर्ल्ड कप में भी देखा उनका प्रदर्शन देखा कि वो बहुत ही अच्छे प्रदर्शन से निकल रहे थे लेकिन इंजरी के चलते उनको सेमीफाइनल फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला रिसेंटली भी जब इंग्लैंड में थे वहां पे भी उनको इंजरी हुई लेकिन अब जिस तरीके से उनको एशिया कप के लिए बुलाया गया स्पेशली T20 के लिए कहा जाता है कि काफी टाइम हुआ है उनको इस T20 फॉर्मेट में खेले हुए और पिछला WPL भी उनको इंजरी की वजह से मिस हुआ था तो मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ये भरोसा देखना चाहते हैं कि नंबर 3 पे अगर जमीमा इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है उनकी जगह वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं अगर टेक्निकली बोले बहुत साउंड क्रिकेटर है प्रतिका रावल और हम सभी ये देखना चाहेंगे कि एक प्रतिभाशाली जो क्रिकेटर है वो हर किसी फॉर्मेट के लिए हमेशा तैयार रहता है तो अब प्रतिका रावल की बारी है कि आज उनको ये बेहतर मौका मिलने वाला है आज पहली बार वो T20 में आ रही हैं किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है ये एशिया कप क्योंकि लास्ट कुछ समय से जो T20 का जो सफर रहा है भारतीय टीम का वो मैं ये कहूंगी कि 50-50 रहा है तो यहां पर हरमनप्रीत की जो फौज है वो ये कोशिश जरूर करेगी कि एशिया कप से वो एक कॉन्फिडेंस लेके जाएं और जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हम फॉर्मेट्स खेल रहे हैं T20s में वहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं
2: और सबसे बड़ी बात है अगर दुबई की बात करें तो स्पिनर्स को कितना सपोर्ट यहां पर मिलेगा बिकॉज उनका एक्शन भी काफी कमाल का रहना चाहिए आज की शाम
3: देखिए काफी सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है कुछ जो कोच हैं अमोल मजुमदार उन्होंने बोला भी है कल कि स्पिनर्स के लिए मदद दिखाई दे रही है तो इसीलिए दोनों टीमों में जो है स्पिनर्स की भरमार है वैसे भी क्योंकि दुबई में टूर्नामेंट हो रहा है तो और दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं लेग स्पिनर्स भी हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं ऑफ स्पिनर्स भी हैं ऑलराउंडर्स भी हैं हमारे पास लेकिन यह है कि बात के

0: हमारी टीम क्लिक नहीं कर रही। एक अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी लगी बीसीसीआई की कि इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए एक 15 दिन का कैंप लगाया गया। उस कैंप में जो हमारी वीकनेसेस थी, जो वर्ल्ड कप के अंदर भी नजर आई कि जिसमें हमने कैचेस बहुत ड्रॉप किए, फील्डिंग हमारी खराब थी, उस पर इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया गया, छोटी छोटी चीजों को पकड़ने की कोशिश की गई है। खेल हम भले ही एशिया कप में रहे हैं लेकिन जो हमारी निगाहें हैं ना वो 2 साल आगे तक के लिए गई हुई है, क्योंकि T20 के बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने हैं। एशिया कप होगा, उसके बाद एशियन गेम्स होने हैं सितंबर में, उसमें T20 फॉर्मेट होना है, फिर T20 के चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2027 की शुरुआत में, उसके बाद ओलंपिक्स होना है 2028 में लॉस एंजलिस का, वो भी T20 होगा, और उसके बाद भी T20 का वर्ल्ड कप भी होना है 2028 में। तो निगाहें हमारी आगे के टूर्नामेंट में है। प्रतीका रावल को टीम में रखना तो वो थोड़ी सी जेमिमा रॉड्रिक्स की वजह से, लेकिन खिलाड़ियों को आजमाया जाएगा, मौके मिलेंगे। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि हमारे 16 खिलाड़ियों को आजमाया गया था, तो यहाँ भी मैक्सिमम खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे। और अगर थाईलैंड के खिलाफ आप किसी नई खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे तो फिर किस टीम के खिलाफ देंगे? तो एक अच्छा डिसीजन, खिलाड़ियों को यहाँ मौके दिए जाएंगे इस टूर्नामेंट को जीतना। हम डोमिनेट किया हमने एशिया कप में, चाहे वो 50 ओवर के फॉर्मेट से 2004 में शुरू हुआ, 2012 में जब वो T20 फॉर्मेट आया तभी थाईलैंड की टीम ने डेब्यू किया था। तो एक ऐसी चीजें हैं, T20 फॉर्मेट में आने के बाद हम इसमें हारे भी हैं 2 बार, लेकिन एक बड़ी बात है चाहे 50 ओवर फॉर्मेट रहा चाहे T20 का, हमने हर फाइनल खेला है
1: जी।
0: ये एक बड़ी हमारे पास बात है, हमारा डोमिनेंस है, उसको हमारे खिलाड़ी भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो आपके साथ जो आपकी लेगेसी चलती है उसको आगे बढ़ा के रखना। और इस समय सबसे अनुभवी कप्तान हरमनप्रीत कौर हमारे पास हैं, उन्होंने 25 जो खेले हैं मैचेस उसमें से 23 में उन्होंने कप्तानी की है, एक अनुभवी कप्तान। और थाईलैंड के पास एकदम कम अनुभवी, जिसको कप्तानी का अनुभव नहीं होगा उतना मुझे लगता है, तो वो देखना होगा कि दोनों कप्तान किस तरीके से इस मैच को लेते हैं
1: जी। और 2024 में श्रीलंका से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, T20 का ही फॉर्मेट था एशिया कप का, उस बार भी हम नंबर 3 का यहां पर जिक्र कर रहे थे। समहाउ भारत की तरफ से उस पोजिशन पे काफी एक्सपेरिमेंटेशन होते रहा है इस फॉर्मेट में, खास करके जब कोई बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो जाता है तब।
2: मुझे लगता है कि ये एक सही टाइम भी बोलूंगी कि एक्सपेरिमेंट आपको करना है, क्योंकि आप अभी वर्ल्ड कप से निकल के आए हैं, आपको अपनी टीम की खामियां भी पता है, आपको ये भी पता है कि आपको कहाँ काम करना है। और मुझे लगता है कि प्रतीका रावल जिस तरीके के सिलेक्शन किया गया है, उनको ये चांस दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन इन फ्यूचर आती है, कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या किसी वजह से अनअवेलेबल उस टाइम पर है, तो आप क्या उस टाइम पे प्लेयर्स को रखते हैं वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये एशिया कप बड़ा क्रुशियल होने वाला है भारतीय टीम की, अगर सोच के हिसाब से मैं बात करूं। और आई होप मैनेजमेंट कोचिज सब इस चीज को देख रहे हैं कि यहां से आगे का सफर आप किस तरीके से तय कर सकते हैं। भारतीय टीम में बहुत ऐसे प्लेयर्स की खोज हुई है पिछले कुछ टाइम से, और उन सभी को हम जानते भी हैं, बहुत अच्छा वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये एशिया कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कुछ प्लेयर्स के लिए कि यहां से वो अपनी जर्नी को और लंबा कर सकते हैं भारतीय टीम में।
3: देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें खासकर वर्ल्ड कप के बाद जो है और स्टेट में अगर हम देखें तो फिर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है कि विमेंस बढ़ चढ़ के आई हैं। वहीं अगर थाईलैंड की बात करें तो शुरुआत आगाज अच्छा हुआ है, लेकिन हाँ अगर कंपेरिजन इस चीज में करें कि वहां पर कितना डेवलप्ड है क्रिकेट और इंडिया उस मामले में भी आगे है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कंपैरिजन जो हम बातें करते आए हैं शुरुआती दौर में वो क्वेश्चन मार्क क्या आज लगेगा आज के मुकाबले पे कि थाईलैंड शुरुआत अच्छी हुई, ये भी अहम होगा मुकाबले।
0: देखिए दोनों का कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, हिंदुस्तान में जितनी क्रिकेट होती है उतनी तो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के अंदर नहीं होती, चाहे वो मेन्स क्रिकेट की बात करें चाहे विमेन्स क्रिकेट की बात करें। और विमेन्स क्रिकेट को जो इतना बढ़ावा दिया गया है कि तमाम स्टेटों में अब तो T20 की जो लीग्स भी हो रही हैं और उनके जो टूर्नामेंट्स हैं नेशनल लेवल के वो भी बड़े मतलब ध्यान से हो रहे हैं, पहले की तरह नहीं हो रहे। मैंने तो एक जमाना जो 90s का देखा जब डायना डुलजी हिंदुस्तान की कप्तान होती थी और किस तरह से विमेन क्रिकेट चलता था, और आज जो मैं देखता हूं जिस तरह से शॉर्ट्स लड़कियां खेल रही हैं तो मुझे तो भरोसा नहीं होता कि किस तरीके से 1-2-3 करके स्टेप आउट करके सिक्स मारना लॉन्ग ऑफ के ऊपर, तो बहुत मतलब गजब का लगता है वो शॉट्स उस तरीके से उनका खेलना। उनके अच्छा स्किलफुल भी हैं अच्छे, जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग में हम देख रहे हैं कभी कल ही एक लड़की ने पूनिया ने सेंचुरी बनाई है, पहली बार सीजन में सेंचुरी भी बनी। और एक लड़की रावल उसने मेडन ओवर भी फेंका T20 के अंदर, मेडन ओवर फेंकना जबकि एक लड़की इतनी आपकी पिटाई कर रही हो कि वो सेंचुरी बना रही हो उसके खिलाफ आप मगर मेडन ओवर फेंकते हैं, तो ये बड़ी चीज है। दोनों तरह की हमारे जो खिलाड़ियों की प्रतिभा वो निखर रही है, तो बड़ा जबरदस्त लगता है ऐसे पुल शॉट्स खेलना उनके, बहुत जबरदस्त। और फास्ट बॉलर्स को आगे निकल के स्टेप आउट करके मारना, वो ऐसा तो मैंने विमेंस क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा। हमारी बड़ी ग्रेट खिलाड़ी पहले भी हुई हैं, संध्या अग्रवाल जैसी बल्लेबाज हुई हैं, बहुत जबरदस्त वो खेलती थी, सब कुछ था। लेकिन जिस तरह की अब बल्लेबाजी हो रही है, तो बहुत अटैकिंग हो रही है। लड़के और लड़कियों के मैच में थोड़ा सा अंतर नजर आता है ताकत का, लेकिन जो जिगरा है ना वो लड़कियों का बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा है, जो पहले नहीं दिखाई देता था। और वही चीज आप देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी, जब हम हरमनप्रीत को देखते थे कुछ साल पहले भी, कि जिस तरीके के वो शॉट्स मारती थी, जिस तरीके के उनके पुल शॉट्स होते थे, बहुत गजब के होते थे। आज भी वो 37 साल की उम्र में हिंदुस्तान की कप्तानी कर रही है, और मौका मिलने पर T20 इसमें तो एक प्लेयर आपको बदल के रख देता है। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा, मुझे बैटर के साथ उतनी दिक्कत नहीं, कि हमारे जो गेंदबाज हैं वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि जब आपको अनुभवी स्पिनर्स आपके पास मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स आपके पास बहुत है, वैरायटी बहुत है हमारी टीम के अंदर, और कोच को थोड़ी 11 चुनने में दिक्कत भी आती होगी कि भाई किसको रखें बाहर किसको अंदर करें टीम के अंदर। लेकिन जब आपके पास इतने वेरिएशन वाले खिलाड़ी हैं, अब तो आपके पास लेग स्पिनर भी एक आ गई है टीम के अंदर, तो ये काफी चीजें हैं। लेफ्ट हैंड स्पिनर अच्छे हैं, आपके पास ऑफ स्पिनर्स अच्छे हैं, वो फील्डिंग वाला जो डिपार्टमेंट है मुझे लग रहा है उसकी मजबूती वो दिखाई देगी पहले मैच से ही, कि भाई हमने जो कैंप लगाया उसमें किस तरह की तैयारी की।
3: देखिए पावर हिटिंग की आपने बात की, और एक पावर हिटर हमारे साथ भी बैठी हुई है लतिका कुमारी, उनसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कप्तान ने कहा, भारतीय कप्तान ने कहा कि ये कमबैक करने का सही समय, यहां पर वो गैप जो हम देखते हैं ना कि पिछले 3 मैचेस हुए हैं थाईलैंड के अगेंस्ट, और जो जीत का फर्क है वो 74-66 इतना ज्यादा फर्क है, वो आज भी देखने को मिलेगा?
2: देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल देखने को मिलेगा, और जो स्टैंडर्ड हाई किया है भारतीय टीम ने पिछले कुछ सालों में वो हमने देखा भी है। और सर ने भी बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा क्रिकेट आज के टाइम पे चल रहा है। अगर हम वुमेन्स की बात करें, ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपकी लीग स्टार्ट हो चुकी है, और ये एक जगह है जहां पर आप पीछे से प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी मेन टीम जो है वहां पर अगर कभी भी कुछ, जैसे कि अभी जमीमा रॉड्रिक्स इंजर्ड हुई तो प्रतिका रावल वहां तैयार रही है, तो ये बैकअप आपके पास हमेशा रहता है। और इसकी वजह से क्या है, हेल्दी कंपटीशन डोमेस्टिक सर्किट में चलता रहता है, और तो हमारे जो इंडिया प्लेयर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि आपको परफॉर्म करते रहना होगा। और T20 जैसा जो फॉर्मेट है वहां पर जिगरे की भी जरूरत है, ताकत की भी जरूरत है, और स्ट्रेटजीज की भी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एशिया कप, जहां से हम इन सब चीजें हैं जो हमें पिछले कुछ मैचेस में परेशान किया है उनको किस तरीके से ओवरकम करें, जो कैंप लगा है वहां किस तरह की तैयारियां हैं वो आज के मैच में पता चलेगा, उनकी प्लानिंग्स, उनके एग्जीक्यूशन क्या करना चाहते हैं, गेंदबाजी जिस तरह सर ने कहा कि अच्छे कॉम्बिनेशन है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा अगर पेस की बात करूं तो वहां थोड़ी तकलीफ नजर आती है, क्योंकि काफी लंबे समय से हमें कोई ऐसा इफेक्टिव गेंदबाज वहां नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से अच्छी शुरुआत कर पाए। T20 मैचेस में हमारे रन्स लीक्स होते हैं जब इनिंग की शुरुआत होती है, तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कंसर्न है भारतीय टीम के पास के किस तरीके से अटैक वो गेंदबाजी में देखते हैं, किनको अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिलने वाली है, तो वो सारी चीज रहेंगे। ये पूरा एशिया कप अगर मैं पर्सनली देखना चाहूंगी तो मैं गेंदबाजी पे ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि बल्लेबाजी मुझे लगता है हम सक्षम हैं किसी भी तरीके का स्कोर खड़ा करने के लिए या किसी भी स्कोर को हम चेज करने के लिए।
1: बिल्कुल, और इस बीच हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि अगर वो हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0112342 1084 और 1085। इस बीच राकेश, चर्चा चल रही थी पेस डिपार्टमेंट पर, और हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में तो खास करके केवल 5 विकेट निकाले पेसर्स ने, लगातार चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही थी उसमें, और जिस कारण भी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं देखने को मिली, सबसे कम थे 5 विकेट।
0: नहीं बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो हमारा तेज बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा अनसेटल्ड लगता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये मैच, इस मैच से पता चलेगा आपको, क्योंकि जो कैंप लगाया गया, तैयारी की गई, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले परंपरा थी कि किसी बड़े टूर्नामेंट, बड़ी सीरीज से पहले तैयारी की जाती थी, तो तैयारी के साथ टीम यहां पर उतर रही है, तो यहां पर निश्चित रूप से जो कमियां रही हैं तेज गेंदबाजी की भी उसके ऊपर ध्यान दिया गया होगा।
3: बिल्कुल, और प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे, खासकर ग्रुप ए की भी बात करेंगे, उस पर भी निगाहें काफी टिकी हुई हैं। बिकॉज आने वाले मुकाबले तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, और सबसे ज्यादा अगर निगाहें होंगी तो वो

0: वांग पर होंगी जिन्होंने 10 मैचों में 20 विकेट लिए हैं। तो यस, वो गेंदबाजी की धार क्या थाईलैंड की तरफ से देखने को मिलेगी? लतिका मैम,
1: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से थाईलैंड ने पिछला मैच खेला है और वहां उनकी गेंदबाजी हुई है, उनके स्पिनर्स का जो दबदबा रहा है, सिर्फ एक ही मीडियम पेसर को उन्होंने अपनी टीम में रखा, अपनी गेंदबाजी में रखा, और बाकी के ऑफ स्पिनर भी, लेग स्पिनर भी, लेफ्ट आर्म सब वहां रहे और विकेट लेने ले पाए उस मैच में। तो थोड़ा सा ये चीज देखनी होगी कि हमारे बल्लेबाज, जो कि हम कहते हैं कि अगर भारतीय टीम होती है तो स्पिन अच्छा खेलते हैं क्योंकि हमारे पास भी वो बेहतर स्पिन अटैक है, तो ये थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगी कि हमारे बल्लेबाज उन स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक छोर से पेसर अगर आ रहे हैं तो दूसरे छोर से आपको स्पिन अटैक जरूर मिलेगा।
2: और अटैक में विविधता बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रश्नों में भी विविधता के लिए हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं। तो पहले श्रोता जिन्होंने अभी कॉल किया उनसे बात करते हैं। नमस्कार।
3: हेलो, नमस्कार सर
2: जी, आप अपना परिचय दीजिए।
3: बिहार से बोल रहे हैं
2: जी। जी, क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी?
3: सर हमारा यही है कि सर अपने भारत तो बल्लेबाज है वो तो अच्छा है सर, गेंदबाजी पर सर ध्यान देना होगा।
2: जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे विशेषज्ञों ने भी अभी एम्फसाइज किया, उन्होंने जोर दिया कि बल्लेबाज तो अच्छे हैं, गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा। और लतिका, खास करके हम पेस अटैक का यहां पर जिक्र कर रहे हैं, रेणुका सिंह ठाकुर जो कि जिन्होंने कमान संभाल रखी थी बहुत लंबे वक्त तक भारतीय गेंदबाजी की, वो फॉर्म में नहीं नजर आ रही, इंजरी कारण है, खास करके न्यू बॉल के साथ इफेक्टिवनेस सेम नहीं है।
1: देखिए रेणुका की अगर हम बात करें, जब आई थिंक एक या दो साल पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ही इफेक्टिव थी, बहुत अच्छा स्विंग भी चल रहा था, लेकिन WPL के बीच में उन्हें थोड़ा बैक इंजरी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से काफी लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर भी रही थी। उसके बाद जब वो कम बैक उन्होंने टीम में किया तो वो पेस हमें वहां पर नजर नहीं आई, वो एक कहते हैं ना कि वो धार नजर नहीं आई, तो वहां से थोड़ा कंसर्न हुआ कि रन लीक ज्यादा करते हैं, 8 या 9 के एवरेज से वो जो है ओवर में रन दे रहे हैं, तो वहां एक कंसर्न हो जाता है। क्रांति गोड जिनसे बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छी गेंदबाज भी हैं वो, लेकिन वही बात कि आप वहां पर अगर हमारे मीडियम पेसर जितने भी देखें तो 8 से 9 रन जो पर ओवर है वो कहीं ना कहीं लीक होते हैं, और T20 के गेम में अगर शुरुआती ओवर्स में आप इस तरीके के रन्स दे रहे होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जो है आपकी टीम पे आ जाता है, तो मुझे लगता है कि ये कंसर्न जो मैंने पहले भी कहा, ये एक कंसर्न देखते हैं कि कितना काम करके आई है भारतीय टीम, और हम चाहेंगे कि क्रांति गौड़, रेणुका सिंह है, ये किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करेंगे, और क्योंकि काफी लंबे समय से भारतीय टीम इन पर भरोसा दिखा रही है, मैनेजमेंट इन पर भरोसा दिखा रहे हैं, कोचिज, कप्तान, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम की नजरों से।
0: इम्पोर्टेंस काफी है इसकी और हमारे कॉलर्स की इम्पोर्टेंस भी उतनी दुगनी हो जाती है, खासकर जब ऐसे मैचेस हो। तो एक कॉलर के साथ हम, हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप?
4: जी बहुत बढ़िया सर, आप सबको नमस्कार, सभी एक्सपर्ट्स को आपको भी।
0: जी जी, आपका सवाल क्या है सर?
4: सर मेरे एक दो सवाल है और कुछ सुझाव भी है। पहला तो सवाल ये भी बनेगा और सुझाव भी हो सकता है, क्योंकि मुझे सही से जानकारी नहीं है, जो महिला क्रिकेट होता है सर, इसमें जो मैन प्लेयर ऑफ द मैच वगैरह ये सब जो अवार्ड्स होते हैं वो उनका चयन क्या जेंट्स लोग करते हैं या महिलाएं करती हैं? अगर जेंट्स लोग करते हैं तो मेरा मानना सर ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार मैं एक वर्ल्ड कप जो चल रहा था महिलाओं का, इसमें एक फैसला मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा था, प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंदाना को, वो स्मृति मंदाना को मिला था, शेफाली वर्मा को होना चाहिए था।
0: बिल्कुल सर, सवाल क्या है आपका?
4: दूसरा सवाल एक मेरा ये है कि जो सर इतने सारे लीग चल रहे हैं, IPL, IPL क्या क्या, तो बेहतर ये होगा कि मेरा मन ICC को इसमें सोचना चाहिए, एक इंटरनेशनल क्रिकेट लीग करवाए, उसी में वो उनको इंटरनेशनल मान्यता भी दे दे, ताकि इधर उधर की लीग वगैरह के लफड़े ना हो, इससे क्रिकेट खराब हो रही है सर, मेरा मानना है कि इससे कोई फर्क
0: नहीं। बिल्कुल, तो राकेश जी कहना ये चाह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि वो प्रोत्साहन मिले महिलाओं को भी, और भी ज्यादा जो है उड़ान पर आए, लेकिन उड़ान के साथ कहते हैं ना कि देखना है उसकी उड़ान को, तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को। प्लेइंग 11 की तरफ थोड़ी सी नजर हम करेंगे, ज्यादा बदलाव इंडियन टीम में तो नहीं है, लेकिन हाँ थाईलैंड निगाहें जरूर होंगी। राकेश जी।
5: नहीं बिल्कुल, देखिए एक जो भी टीमें यहाँ 11 आप बनाते हैं तो पिच के मिजाज को देखकर बताते हैं, और सबको ये लग रहा है कि भाई पिच में जो है स्पिनर्स के लिए मदद रहेगी। तो इसीलिए दोनों टीमों ने स्पिनर पैक्ड अपनी 11 को रखा है यहाँ पर। और लेकिन जिस तरह से थाईलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है तो मुझे लगता है कि वो पिच के अंदर जो शुरुआती कुछ मदद होती है तेज गेंदबाजों के लिए उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहेंगे।
0: राइट, और 120 का हम जिक्र कर रहे थे तो मुझे लगता है कि अनिश्चितताओं का ये खेल है और अनिश्चितताओं की तब्दीली निश्चितताओं में होती है। निश्चित रूप से 120 लग रहा है आपको? थोड़ा सा प्रेडिक्शन सबसे लेना चाहूंगा। लतिका मैम,
1: मुझे लगता है कि पिछला मैच जिस तरीके से इन लोगों ने खेला है, विकेट्स लिए हैं स्पिनर्स ने, तो उसी की वजह से ये टॉस पे इन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया है, क्योंकि इनको लगता है कि हम गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं, दूसरी टीम को हम कम स्कोर पे रोक पाने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां से अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की डेप्थ देखी जाए तो 120 से तो ऊपर हो गई होगा।
2: ऑब्वियसली एम्बिशन दिखाती वहां पे थाईलैंड की स्टैंड इन कप्तान, और जो भारतीय 11 है यहाँ पर वो शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना ओपन करते हुए, प्रतिका रावल डेब्यू करते हुए, हरमनप्रीत कौर कप्तानी की कमान संभालते हुए, भारतीय फुलमली को वापस से मौका मिला है 11 में, ऋचा घोष विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा स्पिन ऑलराउंडर, प्रेमा रावत हैं लेग स्पिन करते हुए नजर आएंगी वो, एन श्री चरणी, क्रांति गौड और नंदिनी शर्मा। लेकिन क्योंकि भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है राकेश, तो वापस से बल्लेबाजी पर यहां पर अगर हम जोर दें और फिनिशर्स के तौर पर जिस लेवल का एवोल्यूशन भारत एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा देखने को नहीं मिला है, काफी दारमदार ऋचा घोष पर ही आ जाता है।
5: नहीं बिल्कुल रहेगा, फुलमानी के ऊपर भी है, वो भी बिग हिटर हैं। और यहाँ पर देखना सबसे बड़ी चीज है कि आपको न केवल ओपन अच्छा करना है बल्कि जो आपके मिडिल ऑर्डर हैं या फिनिशर है, लास्ट ओवर्स में किस तरह से आप लास्ट के 5 ओवर्स में किस तरह से बैटिंग करते हैं, नए बैटर आपके ना आए उस समय, अगर पहले के लोग लंबी इनिंग खेल रहे हैं, जो अच्छा खेल है उसको लंबा टिकना चाहिए यहाँ पर, तो उससे आप बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद मिलती है।
2: जी बिल्कुल, और हरमनप्रीत के तौर पर भारत के पास एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि दोनों रोल डॉन कर सकती हैं, मिडिल ओवर्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की और डेथ में जरूरत पड़े तो फिनिशर का रोल भी।
1: देखिए उनको मैं हमेशा से एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह देखती हूँ कि जिस तरह उनके शॉट्स हैं, उनके पास जो बल्लेबाजी करती हैं, जितना दमखम वो अपने शॉट्स में दिखाती हैं, तो मुझे लगता है कि एक कह सकते हैं कि संपूर्ण तरीके से बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो। अगर उनको जल्दी मौका मिलता है तो वो अपनी टीम के अनुसार शॉट्स लगाती हैं, और जब रनों की गति बढ़ानी होती है तो बड़े बड़े हिट्स भी उनके बल्ले से आते हैं। तो हरमनप्रीत कौर एक ऐसे प्लेयर हैं, कप्तान भी हैं, तो अपफ्रंट होके लीड करने जानती हैं वो।
2: जी बिल्कुल, द कैप्टन नोज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड शी डस कम विद इनॉर्मस एक्सपीरियंस एज वेल। अ बिग थैंक्स टू आर एक्सपर्ट्स, थैंक यू टू यू एज वेल गौतम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन फर्स्ट बॉल 20। वेल वी हेड स्ट्रेट अवे टू द फर्स्ट इनिंग्स वेयर द टू इंडियन ओपनर्स आर ऑल गियर्ड अप, शेफाली वर्मा एंड स्मृति मंधाना। थाईलैंड आर लुकिंग टू रिस्ट्रिक्ट इंडिया टू 120। वेल दैट हैपन्स और नॉट, वीड वेट एंड लिसन।
6: First ball 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार। भारत और थाईलैंड के बीच विमेन्स एशिया कप 2026 में आज मुकाबला खेला जा रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, और ये इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला है। भारत अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतर रहा है और इस मुकाबले में टॉस जीता है थाईलैंड की कप्तान ने, और टॉस जीत करके उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस लाइव कमेंट्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल, मेरे साथ अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे पंकज अठावले, स्कोरर हैं रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन हैं ओपी शर्मा। आप तमाम साथियों का, आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। फिलहाल भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी इस वक्त मैदान पर पहुंच रही है, और आज भारतीय टीम जिस प्रकार से इस प्लेइंग 11 का अगर हम जिक्र करें तो भारतीय टीम में आज स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर कप्तान, भारती फूलमली, ऋचा घोष विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्रीचरणी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा, ये भारत की प्लेइंग 11 है आज के मुकाबले में। प्रतिका रावल आज अपना पदार्पण कर रही हैं भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में।

0: మీ అనుభవాల కోసం నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మిత్రులారా, నమస్కారం.
1: మీరింతవరకు ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి చేసిన మన్ కీ బాత్ ప్రసంగానికి తెలుగు అనువాదం విన్నారు. అనువాదం డాక్టర్ రాయారావు సూర్యప్రకాశరావు, అనువాద పఠనం శ్రీ మడిపల్లి దక్షిణామూర్తి. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ.
2: రజిత్ సిన్హా 19वां अर्धशतक है शेफाली वर्मा का 112वें मुकाबले में. अगली गेंद और इस बार नीची रही, गुगली टर्न हुई, बोल्ड हो गई प्रतिका रावल.
3: लुक एट द स्माइल्स ऑन द फेस ऑफ द थाईलैंड गर्ल्स. दे हैव गॉट अ बिग बिग विकेट. द बॉल राइट ऑन द स्टंप्स, ऑन द मिडिल स्टंप. इट केप्ट अ बिट लो. प्रतिका रावल वाज पुश्ड ऑन द बैक फुट एंड द बॉल जस्ट स्किड after pitching, and this is a lucky break there for Thailand. And look at Sulipon Laumi, she was ecstatic, and she has got a big wicket when we were just celebrating the half century of Shefali Verma at the other end. Pratika Rawal is out on 22. India losing their second wicket at the score of 91. And India, of course, have done a very, very good job. But Thailand, the way they're kind of coming back again and again at crucial moments is something very, very impressive. Mind you, young girls, new team. We won't call them a weak team. We will call them a lesser-known team, because these teams in a multi-team format always create all sorts of problems. And also, for Team India, this is completely a different experience as long as they're playing the big teams like the Australias and the New Zealand and the South Africas. But Harmanpreet Kaur now in the middle, in the 10th over of this particular match. It's a big ground, Iqbal. India have done well, but the way, in fact, the Thailand girls and the fielders have persisted with and persevered is something very important, as Harmanpreet Kaur would be. She is a big hitter, no doubt about it, but will she take the risk at this particular point? Mind you, we don't have Jemima Rodrigues at number 3. Pratika Rawal did a good job, had a very good start, couldn't really continue, but the ball kept low from this particular end, and that is going to be very crucial as the match progresses. Onicha now from the other end. She's been bowling really very well. This time played in the air and just short of that fielder at short extra cover. It was uppishly played by Shefali, and that was very close. A boundary there nevertheless. But things are suddenly changing, and if Thailand are lucky, they might just run through the Indian middle order.
2: बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी थाईलैंड की गेंदबाज कर रही हैं, और ये किस्मत अच्छी है शेफाली वर्मा की कि इस बार उनका कैच एक्स्ट्रा कवर पर पकड़ा नहीं गया, अन्यथा वो आउट हो जाती. फिलहाल एक बार फिर से ओनिचा तैयार. अगली गेंद फ्लाइटेड, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा. स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक पीछे गेंद जा रही है, सिंगल मिला. भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब हो गया है 96 दो विकेट के नुकसान पर. शेफाली वर्मा ने ये 19वां अर्धशतक पूरा किया है, और उन्होंने अपनी कप्तान हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ा. हरमनप्रीत कौर के 18 अर्धशतक हैं T20 क्रिकेट में, और सबसे ज्यादा अर्धशतक जो हैं वो स्मृति मंदाना के हैं. 35 अर्धशतक उन्होंने T20 क्रिकेट में लगाए हैं.
3: Harmanpreet on strike this time. Oh, bit of bounce there. Now, in fact, the end from which Onicha is bowling, the ball is bouncing a bit more after pitching, but from the other end when Laumi got the wicket, so this dual bounce on either side is going to be interesting. Harmanpreet as captain will have to keep a watch on the ends, so that then she can use her bowlers later on with proper effect. They're trying to go for an expansive cover drive straight to the fielder at extra cover. India 96 for the loss of 2 wickets. India have done well, about 10 runs per over, pretty good, no doubt about it. But when you talk about a big victory, Iqbal, you need to get 200, 220 plus in fact against a team like Thailand. But cricket is a funny game. Onicha bowls. Oh, bit of bounce, trying to cut that ball, not coming on the bat completely. Harman will get her run, her first run of the innings, and in fact Shefali Verma has been playing really very well. 7 hits to the boundary, 3 huge sixers, and she has kept one end really scrolling fast, very very good. But the fact that Onicha, when she bowls, she has a slight sling arm action, And this time, going down on one knee, a cross-batted straight down the ground over the bowler. A very innovative stroke that was for four runs. She could have hit it anywhere from point to long on. What she chose was a cross-batted straight shot over the bowler. I guess I have described it properly.
2: बिल्कुल और सबसे सुरक्षित stroke भी है ये. ठीक गेंदबाज के पीछे कोई fielder नहीं रहता मुमन और ऐसे में वहां पर एक सेफ जोन उन्होंने चुना और जैसा हम कह रहे हैं कि शेफाली वर्मा बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी हैं वीरेंद्र सहवाग से इंस्पायर नजर आती हैं और आज बल्लेबाजी भी कुछ वैसी ही कर रही हैं वो एक छोर से वो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन गेंदबाजी कर रहा है किस तरह की गेंदबाजी हो रही है गेंदें क्या हरकत कर रही हैं शेफाली वर्मा के लिए ये तमाम चीजें कोई मायने नहीं रख रही हैं और उन्होंने 29 गेंदों पर 59 रनों की एक बहुत ही जोरदार पारी खेली है 8 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए हैं इस मुकाबले में 10 ओवर का खेल खत्म हुआ है और 10 ओवरों में भारत ने 101 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर आज इस मुकाबले में जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुनना शुरू किया उनको बता दें कि टॉस जीता है आज थाईलैंड की कप्तान ने और टॉस जीत करके उन्होंने पहले भारत को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया भारत की तरफ से स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की और दोनों बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन आगाज दिया भारतीय टीम को और भारत ने 38 रन पर पहला विकेट गंवाया और ये 38 रन भारत ने मात्र 3 ओवर में बनाए थे स्मृति मंदाना अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश तरीके से वो 19 रन बना करके रन आउट हुई 10 गेंदों पर 4 चौके लगाए थे उन्होंने इसके बाद डेब्यूटेंट प्रतीका रावल आई बैटिंग करने के लिए प्रतीका रावल ने 22 रन बनाए 18 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया और फिलहाल शेफाली वर्मा 59 पर और हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रही हैं गेंदबाजी का जिक्र करें तो माया ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है 25 रन दिए हैं कोई सफलता नहीं तिपाचा ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है 22 रन दिए हैं और कोई कामयाबी उनको भी प्राप्त नहीं हुई है सुनीता ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है 27 रन उन्होंने खर्च किए हैं और कोई सफलता उनको भी प्राप्त नहीं हुई है ओनिचा ने 3 ओवर डाले हैं और इन 3 ओवरों में ओनिचा ने 19 रन दिए हैं और कोई सफलता उनको भी प्राप्त नहीं हुई है लेकिन सबसे किफायती गेंदबाजी ओनिचा ने की है 3 ओवर 19 रन और कोई कामयाबी नहीं 6.30 का उनका इकोनॉमी है और इसके अलावा लाउमी ने आते ही पहले ही ओवर में थाईलैंड को विकेट दिलाया उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की है 8 रन दिए हैं और 1 सफलता उनको प्राप्त हुई है पहला विकेट भारत का 38 पर गिरा दूसरा विकेट 91 पर गिरा और इस वक्त कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनके साथ शेफाली वर्मा मैदान पर भारतीय टीम को आगे बढ़ा रही हैं जिस तरीके से शेफाली वर्मा ने बैटिंग की है उनको कॉम्प्लीमेंट करना होगा हरमनप्रीत कौर को पंकज क्योंकि हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी T20 क्रिकेट में लेकर के ऑफ लेट काफी चर्चा में रही है और काफी स्क्रूटनी में रही है कि क्या हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी T20 क्रिकेट को सूट करती है ये बात और है कि उनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता
3: No doubt about it, as Laumi starts a new over, the 11th of the innings, a cheeky sweep from outside the off stump by Harmanpreet. She'll get a couple of runs as the ball trickles over towards fine leg. And it's a very important point that you made about Harmanpreet. And the fact remains that every player goes through different phases in his or her life. And Harmanpreet has a good opportunity to actually play in the shadow of Shefali and kind of get back to what she is good at. But the Thailand girls would be looking forward to exploiting this particular situation. And instead of targeting Shefali, they would try and target Harmanpreet and get wickets at one end. 103 for the loss of 2 wickets.
2: एक बार फिर से लाउमी लेग ब्रेक गेंदबाज अगली गेंद और इस बार टर्न के सहारे इस गेंद को कट किया लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया रन बनाने का कोई मौका नहीं है हरमनप्रीत कौर के पास हरमनप्रीत कौर इस वक्त 1 रन बनाकर खेल रही हैं और उनके साथ 59 पर शेफाली वर्मा बैटिंग कर रही हैं फिलहाल एक बार फिर से तैयार गेंदबाज लाउमी सामने है हरमनप्रीत कौर ये गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को उछाल कर खेला लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद लेकिन ठीक पहले फील्डर के गेंद टप्पा खाई और ऐसे में बाल बाल बच गई हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर
3: You mentioned it right. She's not really getting the shots or the timing really very well. She wanted to go for that expansive drive over the covers. And there was Onicha who was there at long off. And Laumi would be very, very devastated. This would have been a big, big wicket.
2: हरमनप्रीत कौर को सिंगल मिला लेकिन एक जीवनदान भी आप कह सकते हैं. चार रन और छह गेंदों पर ये चार रन उन्होंने बनाए हैं. फिलहाल लाउमी एक बार फिर से चली ये गेंद और इस बार इस गेंद को बैकफुट पर ऑन साइड में मोड़ा मिड विकेट पर शेफाली ने. खुद गेंदबाज गई हैं फील्ड करने के लिए. एक रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन की मदद से भारत का स्कोर 105 रन दो विकेट के नुकसान पर. 11वां ओवर पारी का चल रहा है. लाउमी ने अपने पहले ओवर में 8 रन देकर के एक विकेट लिया. इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दिए हैं लाउमी ने और इस वक्त कप्तान हरमनप्रीत कौर सामना करने के लिए तैयार. लेग ब्रेक गेंदबाज की अगली गेंद शॉर्ट गेंद और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में सिर्फ पुश भर कर पाई. एक रन लेने का मौका, अच्छा मौका था इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का. समझ नहीं पाई दरअसल हरमनप्रीत कौर, ऐसा लग रहा है टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई, गुगली थी ये और ऐसे में ऑन साइड में खेला एक रन के लिए. और यही कारण है कि आलोचनाओं के केंद्र में रहती हैं हरमनप्रीत कौर. इतनी छोटी गेंद, इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, आपको घूमकर इस गेंद को मारना चाहिए था. लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि आत्मविश्वास जो है हरमनप्रीत का थोड़ा सा हिला हुआ है. इस ओवर की आखिरी बॉल के साथ लाउमी तैयार. ये गेंद शिफाली के लिए शॉर्ट गेंद.
4: समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी. भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया. यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया. श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे. प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा. नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की. मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई. अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की. और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने. अब समाचार विस्तार से. भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है. उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है. दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई. ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई. भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है. उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं.
5: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है. आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे. हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है. इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा.
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है.
5: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं. इस वर्ष विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030

0: 5 बिलियन डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
0: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
0: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
4: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज

0: तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership will be a powerful force for peace, progress, and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।

0: अगले 10 ओवर में जो वापसी की है थाईलैंड ने वो बहुत ही अनबिलीवेबल लगती है, यकीन के परे लगती है कि भारत जैसी टीम के खिलाफ थाईलैंड जैसी टीम इस तरह की वापसी करेगी। माया 19वां ओवर लेकर के आ रही हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पहली बॉल, इस पहली बॉल को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, रन आउट किया, वहां पर चांस है लेकिन सीधा थ्रो इस बार लगा नहीं और ऐसे में एक रन जोखिम पूर्ण ही सही भारत के खाते में आता हुआ।
1: एक बार थिंग्स आर टर्निंग आउट एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन द कॉन्फिडेंस गोज अप व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। थाईलैंड डेफिनेटली हैज गॉट अ बिट ऑफ लक टुडे एंड बिट ऑफ यस यस नो नो काइंड ऑफ अ सिचुएशन। इट्स द लास्ट पेयर इन द मिडल बट इट दैट इज व्हाट टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस shorter format of this wonderful game.
0: ये 19वां ओवर चल रहा है और ये पहला मौका है जब कोई डायरेक्ट थ्रो मिस किया है थाईलैंड ने। इस ओवर के अगली बॉल के साथ तैयार हैं गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। पिछली 30 गेंदों पर 25 रन भारत ने बनाए हैं और 4 विकेट गंवाए हैं। राउंड द विकेट आते हुए इस बार अगली गेंद फुल टॉस पर लेकर इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन डीप में फील्डर मौजूद, स्वीपर कवर पर, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं और इसे एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ भारतीय टीम का अब हो गया है 142 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम जोड़ी मैदान पर है भारत की तरफ से और इस अंतिम जोड़ी से उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम ये 20 ओवर्स खेल जाएं, भारत ऑल आउट ना हो, वरना ये अपने आप में बड़ी ऐसी बात हो जाएगी जहां आप कह सकते हैं कि जग हसाई वाली बात। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को फुल पिच थी, ऑन ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर एक रन आसानी के साथ लिया बल्लेबाज क्रांति गौड़ ने और इस एक रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 143 रन भारत का 9 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर के बाद।
1: In fact, Iqbal, India would be backing themselves because they have a very strong bowling lineup and they have got some good runs on the board. But of course, as we mentioned at the beginning of the commentary, that in a multi-team format, the net run rate is always a very, very crucial thing and this is a wonderful opportunity for India.
0: अगली बॉल के साथ राउंड द विकेट आ रही है माया, अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को कट किया, गेंद जा रही है पॉइंट और कवर के बीच में, एक रन आसानी के साथ और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 144 रन 9 विकेट के नुकसान पर। श्री चरणी 4 पर और 3 पर क्रांति गौड़ बैटिंग कर रही हैं। माया का ये तीसरा ओवर है, अब तक उन्होंने 29 रन दिए हैं और कोई सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। पिछली 18 गेंदों से भारत ने कोई चौका या छक्का नहीं लगाया है, अपने आप में ये सारी कहानी आप समझ सकते हैं। अगली गेंद हाई फुल टॉस, बॉलर के सर के ऊपर से उछाला लेकिन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएगी गेंद, गेंद को रोक लिया गया। क्या नो बॉल का इशारा अंपायर का आएगा? ऐसा लग रहा है कि सिंगल तो भारत ने पूरा किया है लेकिन नो बॉल करार नहीं दिया गया, गेंद डिप कर रही थी और कदमों का इस्तेमाल करते हुए भी खेला था बल्लेबाज ने, तो ऐसे में ये नो बॉल नहीं दिया गया, गेंद डिप कर रही
1: मार्जिनल
0: डिप कर रही थी गेंद। फिलहाल अंतिम गेंद के साथ माया तैयार है, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज नंदिनी। ये गेंद नंदिनी के लिए और एक बार फिर से हाई फुल टॉस, इस बार इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर क्रैश किया लेकिन स्वीपर कवर ने दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया, सिर्फ एक रन आखिरी बॉल पर और इसी के साथ 19 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद भारत 146 9 विकेट के नुकसान पर। कम से कम अच्छी बात यह हो रही है पंकज कि भारत 20वें ओवर में प्रवेश कर रहा है।
1: Yes, and as OP Sharma, our statistician, gave us a number, highest score for India against Thailand is 148. Probably they should go ahead of that and there shouldn't be a need of rewriting some stats there. But important here is that the Thailand players are enjoying themselves. If you see them on the field, if you see them bowling, and that is really a very positive aspect about their team because they know they are up against a huge big team like India and they have got them on the back foot. So this is a very interesting match and also for India it's a good learning because if you have a bad day very early on in a tournament that's always better, but Team India of course needs to get a big victory here as they begin their campaign in this particular Asia Cup. So the last over of this innings coming up, Sri Charani is on strike, Thipatcha who has picked up a wicket is getting ready to bowl the last over, left arm round wicket, a beautiful tossed up delivery trying to lure Sri Charani into that big shot, make a mistake, doesn't really connect it well, a dot ball, very very expensive, it's worth gold and of course you know how expensive gold is nowadays, Iqbal, this dot ball is actually worth 10 grams if I could say that. Coming down the track and the batter misses it, the wicket keeper misses it and there should be a bye. there for India. Coming down to track, Thipancha anticipated it really very well, kind of fired it under the bat, and the wicketkeeper couldn't really correct. Very difficult situation here for wicketkeepers to kind of collect that. She was disappointed. And wicketkeeping, overall fielding has been brilliant for Thailand. 147 for 9. Last over is in progress. Can India go beyond 150? Last pair in the middle. Coming down the track, Kranti has hit it high in the air and it goes all the way. Half a dozen runs to get the 150 up. Kranti Gaud with her shot over long off. That is a sign of confidence. 153 for 9. A good shot coming after quite some time.
0: बिल्कुल और अच्छी खासी गेंदें खेलने के बाद भारत को एक बाउंड्री मिली है और ये छक्का और जो रिकॉर्ड का आप जिक्र कर रहे थे कि भारत का 148 उच्चतम स्कोर रहा है थाईलैंड के खिलाफ टी20 में, चलिए उसको तो भारत ने पार कर लिया है.
1: 153 for 9. Once again coming down the track, couldn't kind of come under that ball, drives it towards long on. Kranti, she will get a single and she will take India to 154 for 9. With the kind of score India had after 10 overs, 200 was the forecast on the cards, but there was a sort of an El Nino effect in between in the last 10 overs in terms of runs, and the monsoon of runs wasn't really good for India in the second half of the innings, and they are at 154 for 9. In fact, good shot, past the bowler, won't trickle all the way. The fielder is there at long on, Chanida, and Sri Charney will get a single. Doesn't matter, last ball of the over, both these girls have done a very, very good job in terms of not losing the wicket and at least playing out the entire 20 overs and getting India mainly past 150. 155 for 9. Last ball coming down the track, nicely hit over the covers. Good shot there. One bounce into the fence. Kranti does the needful. A six and a boundary in this over. And India end up with 159 for the loss of 9 wickets in their allotted 20 overs. Kranti unbeaten on 15. Sri Charney on 6 unbeaten. And that means Thailand will have to come out and, in fact, get a target of 160. Runs if they want to win this match. This is a very, very big moment here. India making a sort of a comeback, and after 20 overs, Thailand, remember, they won the toss and they decided to bowl first, and they have restricted India to 159 runs after 20 overs. India losing 9 wickets. India scoring 65 runs in the power play for just 1 wicket, but the middle overs turned out to be where the Thailand bowlers were very, very in control. They regulated everything. Shefali, top scorer with 64 of 36, and Smriti, Pratika, and Bharti, and in the end, Kranti Gaud, the only players who got into double figures, and India have given a target of 160 for the loss of 9 wickets. So that's the end of the first innings. We'll take a short break. We'll head into the studio for our mid-innings show, and we'll be back with the second innings very soon.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है और हम हाजिर हैं फ्री हिट 20 लेकर। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त गौतम तो खिदमत में हाजिर है। और व्हाट अ मैच, 159 पहली इनिंग की बात करें, और हम कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन करके चल रहे थे कि अब की बार कहीं ना कहीं 200 के पार जरूर। लेकिन मेरा साथ देने के लिए और चर्चा करने के लिए कुछ ऐसे लोग आ गए हैं एक बार फिर से, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी हमारे साथ हैं, एंड बहुत ही वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार मिस्टर राकेश थपलियाल हमारे साथ हैं, और मेरी को होस्ट मेघा भी हैं। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, शुरुआत की बात करें वो रन आउट, और उसके बाद दो बड़े रन आउट, और 13वें ओवर के बाद कैसे थमी। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम पर थोड़ा सा विराम जरूर लग रहा था, लेकिन हाँ फाइनली एक सम्मानजनक स्कोर जरूर है। लतिका जी,
1: देखिए मैंने पहले भी कहा शो में कि ये एशिया कप बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगर भारतीय टीम के दृष्टिकोण से हम देखें, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से T20 क्रिकेट हम इतना बेहतर अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट में आप देखना चाहेंगे कि आपके बल्लेबाज गेंदबाज किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। और रही पावर प्ले की बात, अच्छा एक स्टार्ट मिला स्मृति मंदाना से और शेफाली वर्मा से जो उन्होंने हिट्स लगाए, लेकिन मुझे लगता है कैजुअल अप्रोच की वजह से जो विकेट गवाया स्मृति ने और उसके बाद लगातार जो आपके विकेट गिरे हैं उसकी वजह से आज ये टोटल जो 170, 75 या 180 के आसपास भी हो सकता था वो कहीं ना कहीं 160 तक से,

0: स्कोर कार्ड की हम बात कर रहे थे वो शायद और भी विशालकाय हो सकता था।
1: देखिए, एक तो स्मृति मंदाना का शुरुआत में रनआउट होना कैजुअल आपने लिया कि भाई डायरेक्ट हिट नहीं हो पाएगी, एक कॉन्फिडेंस उनको था अपने ऊपर, फील्डर्स के ऊपर नहीं था, लेकिन जिनके साथ आप कम खेलते हैं वो ऐसे ही आपको चौंकाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से प्लेयर्स की नहीं लग रहा था कि वो इस तरह की बेहतरीन थ्रो कर सकती होंगी, लेकिन वो उन्होंने की। वहां से हमारा थोड़ा सा बैड पैच शुरू हो गया और उसके शेफाली वर्मा ने अच्छा किया, लेकिन आप देखो कि आप किस तरह का जो शॉर्ट सिलेक्शन है, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जिस तरह से इजी कैचेस उन्होंने खेले, जिस तरह के जो शॉट्स खेले, वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरीके के शॉट्स खेलेंगे। तो बहुत ही इजी, पहले जो बड़े शॉट्स लग रहे थे उसमें वो आउटफील्ड में कैच पकड़ते हुए नजर नहीं आ रही थी फील्डर, ऐसा लग रहा था कि इनको कैच पकड़ने की कला में महारत नहीं है। लेकिन जब आपने इतने इजी कैच दे दिए, बॉलर के हाथ में दे दिया, दूसरे फील्डर्स को इतने इजी कैच दे दिए, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो ये मुझे लगता है कैजुअल अप्रोच जो रही, पहले 10 ओवर में आपने बना लिए 100 रन, तो उससे आपको लगा कि भाई हम तो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है वो बहुत जबरदस्त थाईलैंड की टीम ने, और ये दिखाया उन्होंने कि क्यों वो इसके जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था उसमें क्यों वो चैंपियन बने, यूएई जैसी टीम को फाइनल में उन्होंने हराया। उनके बॉलर्स बड़े नाम भले ही वैसे ना हो, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, स्पिनर्स ने खासतौर पे बड़े अच्छी गेंदबाजी की, लेग स्पिनर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट लेना और 2 बार एक एक ओवर में 2-2 विकेट, आपने क्रिकेट में कहा जाता है नेवर लूज 2 क्विक विकेट्स, वो फार्मूला जो है शायद इनके दिमाग से उतर गया हमारी खिलाड़ियों से, 2-2 विकेट गए। और जो नए खिलाड़ी हैं जिनको जैसे मौका, प्रतीका रावल ने थोड़ा अच्छा किया लेकिन आउट बड़े खराब ढंग से हुई, जो प्रेमा रावत हैं वो जिस तरीके से आपने पिच में आप आगे निकल आए, उस समय जरूरत नहीं थी उस चीज की, जब आपके विकेट्स गिर रहे हैं थोड़ा सा आपको रुक के चलना चाहिए। क्रिकेट में देखो रन बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन हाउ टू बिल्ड द इनिंग्स सबसे बड़ी चीज ये होती है, पारी को संवारने की कला अगर आपके अंदर नहीं आएगी तो वही होगा जो आज यहाँ भारतीय टीम के साथ हुआ।
2: बिल्कुल, इट टर्न्ड आउट टू बी अ टेल ऑफ टू हाफ्स विद India scoring 101 for the loss of 2 wickets in the first 10 overs and then subsequently just managing 58 for 7, although obviously credit to the tail enders for ensuring Latika ki Bhartiya team ne pure 20 over ballebazi ki.
3: देखिए 20 ओवर बल्लेबाजी तो यहां पर करी, लेकिन मैं गेंदबाजी की तारीफ ये करूंगी कि उन्होंने एक ही लाइन लेंथ में गेंदबाजी की है, भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बड़े शॉट्स खेलने का। जरूर शुरुआत अच्छी रही भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से शेफाली और स्मृति से, लेकिन उसके बाद लगातार परेशान किया, डॉट बॉल्स का प्रेशर बनाया जिसका शिकार हरमन भी हुई गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से। आगे आने वाले जो बल्लेबाज हैं उन बल्लेबाजों को भी तकलीफ हुई रन बनाने में, और ये क्रेडिट जाता है इनकी गेंदबाजी पे, इनकी फील्डिंग एफर्ट्स पे, जिस तरह के कैचेस लिए, डायरेक्ट हिट्स लिए, तो एक दिखाता है कि ये टीम आपको इतनी आसानी से रन नहीं बनाने दे रही है। तो अब ये कॉम्पिटिशन, अब ये देखना होगा कि बल्लेबाजी में आके ये लोग क्या करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चिंताएं यूं की यूं बनी हुई हैं भारतीय टीम के लिए, जिससे ये पार पाना चाहते होंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड अभी एक और पार्ट बचा है इस मैच का, हम उसको देखेंगे वो किस तरीके से।
0: बिल्कुल, चिंता के विषय की आपने बात यहां पर की और कहा कि प्रेशर में बिखरे नहीं निखरे। एक मोड ऐसा भी आया था जब ऋचा को शायद वो स्टेज सेट करने का मौका मिला था, वहां पर भी गड़बड़ हुई कहीं ना कहीं, और ये क्वेश्चन मार्क हमेशा से लगा हुआ है कि वो जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ती है ऐसे मोड।
1: बिल्कुल, आपने आते ही पहली गेंद से इस तरीके का वो जो शॉट खेला है वो उससे ऋचा घोष से वैसी उम्मीद नहीं आपको की जाती, आपने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। देखिए बॉलर्स का, फील्डर्स का जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम वो हमारी बल्लेबाजों ने किया है, वो तो 10 ओवर में पूरी तरह से डाउन आउट हो चुके थे। हमारा बड़ा स्कोर, मैंने देखो आपको पहले भी कहा था कि जो इनिंग खेले वो एंड तक लंबी इनिंग जाएगा, अगर एंड तक आपका शुरुआती बल्लेबाज टिकेंगे, अगर एंड के ओवर्स में लास्ट 5-6 ओवर्स में आपके नए बल्लेबाज आएंगे तो आपको रन बनाने में दिक्कत आएगी, आप बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन शेफाली ने जिस तरीके से इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, जितनी तारीफ हो उतनी कम है, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुई उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। वैसी उम्मीद मतलब नहीं की जाती थी कि इस तरीके से आउट होंगी, जो कप्तान हरमनप्रीत ने जो बैड शॉट खेला इस तरीके से, वैसी उम्मीद उनके साथ नहीं थी। लेकिन इन बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी, इन्होंने स्पिनर्स ने ज्यादा तेज फेंकने के बजाय बॉल को धीमा रखा, हवा में ज्यादा लटकाया, वेरिएशंस के साथ की, कोई कोई बॉल उन्होंने इस तरीके से की जो ज्यादा बाउंस उस पे पिच पे नहीं आया, तो उनको उस वेरिएशंस का फायदा मिला। और एक लाइन

0: स्टिक करना एक कम अनुभवी गेंदबाज जो होते हैं जिनको ज्यादा इंटरनेशनल का अनुभव नहीं होता और एक बड़ी टीम के खिलाफ जब खेल रहे होते हैं तो बड़ी हिम्मत चाहिए बॉलर्स के अंदर, खासतौर पर स्पिनर्स के अंदर, वो भी T20 में। बहुत हिम्मत इन गेंदबाजों ने दिखाई है कि जिस तरह की बिल्कुल विकेट टू विकेट उन्होंने गेंदबाजी की। शुरू में ठीक है थोड़ा बहुत वेवर्ड रहे वो, उनके फास्ट बॉलर्स को भी शॉर्ट पिच गेंदे की, क्योंकि आजकल शॉर्ट पिच गेंदों पे ही लोग विकेट लेते हैं। फास्ट बॉलर्स का तो एक फंडा ये बन चुका है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो वुमेन्स क्रिकेट हो, कि आप शॉर्ट पिच फेंकते रहो कितने मारेगा कोई, एक आध तो उठ ही जाएगी ना कैच। तो वो वाले उस पर अच्छे रन बनाए, लेकिन जो बैक शॉर्ट सिलेक्शन है वो भारत को बहुत नुकसान दे गई।
1: लियोम ने कमाल तो किया, 3 बड़े विकेट लिए, लेकिन यहां पर जिनका डेब्यू हुआ उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रतिका रावल, एक बड़ा शॉट जरूर देखने को मिला।
0: नहीं, प्रतिका रावल ने देखो अच्छी की, एक अच्छी साझेदारी उन्होंने लगाई है शेफाली वर्मा के साथ, अर्षति की साझेदारी करना आसान नहीं, अच्छा किया। लेकिन क्या होता है कि आपको जब आप टिक गए तो आपको लंबी इनिंग खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो उसमें कहीं ना कहीं कमजोर रह गए। और जब कहते हैं लगातार विकेट आपके गिरने लगते हैं तो जो विपक्षी टीम है उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप बहुत बड़े नाम हैं, थाईलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो इतने बड़े नाम नहीं है, उनके लिए उनके गेंदबाज के लिए स्मृति मंदाना को आउट करना बहुत बड़ी बात, उनके फील्डर्स के लिए डायरेक्ट हिट, ये बार बार चीजें दिखाई जाएंगी लोगों के जहन में रहेंगी। स्मृति मंदाना भी आज रात को सो नहीं पाएंगी कि किस तरीके से डायरेक्ट हिट इस तरीके से लगा है, वो बड़ा हर्ट करता है किसी भी प्लेयर को। दीप्ति ने खुद अपनी कॉल पे जाके आप रनआउट हो गए, आप बॉल को देखने लग गए, फील्डर को देखने लग गए, आपने अपने उस पे रन पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे अपना एरिया कवर करना है। वो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बताया जा रहा था भाई कैंप में छोटी छोटी चीजों को पकड़ा है, तो ये तो बल्लेबाजी में लग रहा है कि भाई छोटी छोटी चीजों पर अभी और बहुत काम करने की जरूरत है।
2: जी बिल्कुल, और इसी तरह से अपनी छोटी छोटी चीजों पर काम करते हुए थिपाचा हाईएस्ट विकेट टेकर T20 आईज की उन्होंने आज भी प्रभावित किया अपने लेफ्ट आर्म स्पिन से।
3: बिल्कुल, देखिए कोई भी गेंदबाज होता है और गेंदबाजी जब वो करता है तो ये देखा जाता है कितना कंसिस्टेंटली वो विकेट ले रहा है, रन्स नहीं दे रहा है, बल्लेबाजों को कितना प्रेशर में लेकर आता है, और देखिए इसी की बदौलत वो आज हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 में। और आज इस मैच में भी उन्होंने शो किया कि गेंदबाजी जब आप करते हैं तो एक कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, एक लाइन लेंथ कितनी इम्पोर्टेंट होती है कि बल्लेबाज को आप उनके शॉट्स ना खेलने दें। तो मुझे लगता है कि पूरी ही टीम के जो भी गेंदबाज रहे हैं बहुत ही अच्छा कमबैक किया है उन्होंने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, प्रतिका रावल को आज ये मौका मिला था, वो पूरा एक लंबा यहां से खेल सकते थे, 20 ओवर्स पूरे खेल सकते थे, क्योंकि एक शुरुआत जरूर मिल चुकी थी प्रतिका रावल को, और एक कॉन्फिडेंस भी दिखा था जिस तरीके से उन्होंने सामने एक बड़ा हिट भी लगाया था। तो मुझे लगता है कि वही बात है कि छोटी छोटी चीजें जो हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं उनको और आपको एग्जीक्यूशन में लाना बहुत जरूरी है।
1: खासकर हम अगर रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट की बात करें और अब सेकंड इनिंग की तरफ जब हम जाएंगे तो ऐसे में दीप्ति का कंट्रीब्यूशन और श्री चरनी का कंट्रीब्यूशन कितना अहम होना चाहिए पावर प्ले में?
0: देखिए बड़ा अहम रहेगा, जैसे उन्होंने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ शुरुआत की तो आपको जो एक ओवर फास्ट बॉलर से कराया, सेकंड ओवर उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर से कराया, तो मुझे लगता है यहाँ हमारे साथ भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि स्पिनर शुरुआत में ही लगें और पावर प्ले में ज्यादा ओवर उनको मिल जाए करने को। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको अब बेहतरीन फील्डिंग करनी होगी और विकेट चटकाने की तरफ जाना होगा। अगर आप शुरुआत में विकेट नहीं लेंगे, कमबैक तो देखिए कर सकते हैं, इन्होंने भी कमबैक किया, कहा जाता है T20 में कमबैक नहीं होता, लेकिन कमबैक हुआ है थाईलैंड का ना, तो यहां हमारा भी हो सकता है। लेकिन हमें अगर स्ट्रांग पोजीशन में रहना है तो शुरुआत में ही हमें विकेट चटकाने होंगे।
1: बिल्कुल, गलती गलत फहमियों में तब्दील नहीं होनी चाहिए, खासकर टेक द कैचेस एंड विन द मैचेस। वो कैच पहले भी छूटे थे लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में हमसे वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो थाईलैंड ने की।
0: कोई भी किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और सबको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा और उनके बल्लेबाजों को भी हल्का मानने की गलती नहीं करनी होगी।
3: मुझे लगता है कि उनके कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो काफी अच्छे रन्स बनाते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर खासा ध्यान देना होगा। हमारे जो गेंदबाज हैं, अगर हम मीडियम पेसर्स की बात करें, नंदिनी की बात करें, क्रांति गौड़ की बात करें, तो पिछले कुछ समय से हमने वो फॉर्म उनकी गेंदबाजी में नहीं देखा है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी खलती है, रन्स ज्यादा लीक होते हैं। तो ये सब देखना होगा कि आपने उन दोनों गेंदबाजों को अगर आज के प्लेइंग 11 में रखा है तो क्या हम दोनों को नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए देखेंगे या एक एंड से हमें पेस अटैक दिखेगा, एक से स्पिन अटैक दिखेगा, ये देखना होगा। लेकिन पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे दोनों ही गेंदबाज देखने की, नई गेंद से वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि अगर आप काम करके आए हैं तो ये मैं बार बार कह रही हूँ, एशिया कप एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कि आप हर चीज को यहाँ एग्जीक्यूशन में लेकर आ सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपफ्रंट होके उन्हीं दो गेंदबाजों से आप शुरुआत करा सकते हैं इनिंग की।
2: बिल्कुल। और राकेश, हमने देखा कि किस तरह से इनिशियल ओवर्स में देर वॉज मूवमेंट अप फ्रंट, हालांकि जैसा आपने मेंशन किया शॉर्ट पिच डिलीवरी कर रही थी पेसर्स, इसलिए उतना मूवमेंट को भुना वो नहीं पाए।
0: नहीं बिल्कुल, और हमारी जो बल्लेबाज है ना वो देखिए शॉर्ट पिच गेंदों पे बहुत अच्छे, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, शेफाली वर्मा हो, बड़े अच्छे पुल शॉट्स लगाने में वो महारत थी, और ऑफ साइड की गेंदों पे भी आजकल बढ़िया पुल शॉट लोग लगाते हैं, तो सही लाइन और लेंथ में होना चाहिए। लतिका ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं तो आपको शुरुआत में उनके साथ दो दो ओवर तो कम से कम जाना चाहिए।
1: बिल्कुल, और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, और खासकर ऐसी पिचेस की अगर हम बात करें, दुबई स्टेडियम की बात करें, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब सेकंड इनिंग में आपकी?
0: देखिए ये पहला मैच होता है किसी भी टीम का जब एक किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के अंदर, तो थोड़ा सा एक पिच को लेके होता है कि जब तक आप खेले नहीं, प्रैक्टिस पिचें एक अलग तरह की होती हैं और जब आप मेन पिच के ऊपर खेलते हैं तो एक अलग तरीके की चीज आपको मिलती है। तो आज थोड़ा सा एहसास होगा, पिच का अंदाजा हमारी बल्लेबाजों को हो गया होगा, सब अनुभवी हैं, और मुझे लगता है कि अब वो जो गेंदबाजी है उन्हीं की तरह से सही लाइन और लेंथ की बॉलिंग आपको करनी होगी और विकेट लेने की तरफ जाना पड़ेगा। अगर 20 ओवर पूरे खोलेंगे तो हो सकता है वो आपको मैच में हरा भी दें।
1: बिल्कुल, टेल एंडर्स ये सवाल कहीं ना कहीं आज आया है। लतिका मैम, तो आपको लगता है कि शुरुआत अगर आप सही कर लेंगे, ओपनर्स को थोड़ा सा सेटल डाउन नहीं होने देंगे, तो जाहिर सी बात है स्कोर कार्ड इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलना पड़ेगा आपको।
3: देखिए T20 का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि आपको विकेट लगातार अंतराल में लेनी होगी, तभी आप कामयाब रहते हैं किसी भी मैच को जीतने के लिए। तो यह उम्मीद यही है कि क्रांति गौड़ किस तरह की गेंदबाजी करेंगे और नंदिनी कैसी गेंदबाजी करेंगे, और आप मैच की शुरुआत होने जा रही है तो देखते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन हम आगे देखने वाले हैं।
1: बिल्कुल, और मुलाकात होगी आपसे फिर, और ये T20 का महासंग्राम है, अनिश्चितताओं का ये खेल है, फिर से हाजिर होंगे।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारत और थाईलैंड के बीच विमेन्स एशिया कप का मुकाबला इस वक्त चल रहा है, जहां पर भारत ने 160 रन का लक्ष्य दिया है थाईलैंड को, और इस वक्त थाईलैंड की दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर हैं और थाईलैंड अपनी पारी की शुरुआत कर रहा है। क्रांति गौड़ गेंदबाजी करती हुई, और क्रांति गौड़ गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार होती हुई बल्लेबाज। इस बीच क्रांति चली, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और इस बार इस गेंद को बेहतरीन कट किया और गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन। शानदार स्ट्रोक, खाता खुलता हुआ इस चौके की मदद से थाईलैंड का। तीन गेंदें हुई हैं पहले ओवर में, और इस गेंद को जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को कट किया और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। क्रांति गौड़ एक बार फिर से तैयार हो रही हैं और सामना करने के लिए तैयार हैं नताकन चांतम इस ओवर की चौथी बॉल के साथ। भारत ने 160 रनों का लक्ष्य दिया है थाईलैंड को मुकाबला जीतने के लिए। क्रांति एक बार फिर से चली, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, और इस बार धीमी रफ्तार की गेंद अंदर आई। इस गेंद को चांतम ने सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। भारत ने निर्धारित 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 159 रन बनाए, और 160 रनों की चुनौती इस वक्त दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर थाईलैंड के सामने। अगली बॉल, बल्ले का अंदरूनी किनारा, और इसी के साथ चांतम प्लेड ऑन, भारत को पहली कामयाबी। नताकन चांतम ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद थी, ड्राइव करने के लिए गई और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लग करके स्टंप पर चली आई, मिडिल स्टंप पर जाकर गेंद हिट करती हुई, और इसी के साथ भारत को पहली कामयाबी। मात्र 4 की रन संख्या पर थाईलैंड ने अपना पहला विकेट

0: over. Slightly short, nicely played towards deep point for a single. Important here for Thailand batters that they keep getting the runs either through singles or doubles or through boundaries, but make sure you're getting 6 runs per over and then look out for the bad deliveries. Also, Iqbal, it's going to be interesting to see which Indian bowlers do the Thailand batters target, because they'll have to pick up one or two bowlers from the Indian lineup so that they can kind of get that acceleration towards the target of 160. Last ball of the over. Maya Panita is on strike, waits for it, lets it swing away, judges it. Jovial young girl, smiles all around, and end of over number 2, 14 for the loss of 1 wicket, Thailand.
1: जिस तरह से ननापत की बल्लेबाजी है और जिस तरह से आते ही उन्होंने थोड़ा सा इंटेंट दिखाया है, निश्चित तौर पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बल्लेबाज के द्वारा कुछ तेज रन बनाने की कोशिश होगी। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से प्रयास यही है कि थाईलैंड को जितना कम हो सके उतने रनों में आउट किया जाए, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम की यहां पर गेंदबाजी चलती है। आज भारत अपना पहला मुकाबला खेल रहा है, दूसरे मुकाबले में 3 सितंबर को भारत का मुकाबला हांगकांग चाइना से होगा। इस बीच नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद रूम बनाकर खेलना चाहा, गेंद हवा में, इधर रनआउट का भी खतरा था, सीधा थ्रो स्टंप पर लगा है, कैच तो हुआ नहीं, लेकिन शेफाली वर्मा ने गेंद को उठाकर स्टंप पर मार दिया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और ऐसे में तीसरे अंपायर की तरफ इस वक्त इशारा किया गया है। गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद हवा में लहराई थी, मिडॉन पर खड़े हुए फील्डर ने कोशिश की, और ऐसा लग रहा है कि बल्ला शायद बाहर ही रह गया है खिलाड़ी का। गेंद जब स्टंप पर लगी, बेल्स जब ज्वलित हो उठी, उस समय क्या बल्ला क्रीज के बाहर है या अंदर है, ये तीसरे अंपायर को थोड़ा सा स्लोमो में देखना होगा। ये जस्ट गेंद जब लगी है, बल्ला शायद उसी वक्त अंदर की तरफ आ गया है, लेकिन अभी भी जो मोशन, जिस मोशन में देखा जा रहा है, शायद वो करेक्ट नहीं है, स्लोमो में देखना होगा। और इस वक्त तीसरे अंपायर के द्वारा इस वक्त देखा जा रहा है, नजदीकी निगाह डाली जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि तीसरे अंपायर का निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा और नॉट आउट का ही निर्णय आता हुआ तीसरे अंपायर का। अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर के द्वारा, शिफाली वर्मा के द्वारा। फिलहाल अगली बॉल के साथ चली क्रांति गौड़, ये गेंद बल्ले का किनारा, स्लिप में दीप्ति शर्मा ने कैच छोड़ दिया। दीप्ति शर्मा के लिए एक आसान सा कैच, कमाल की गेंदबाजी क्रांति की। माया ड्राइव करने के लिए गई, बल्ले का जेन्युइन एज, और स्लिप में हाथों में आया हुआ कैच छोड़ दिया। अगली गेंद लेग स्टंप पर फुल टॉस, घुमाया ऑन साइड में, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, एक रन मिला, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर थाईलैंड का। आसान सा मौका, आसान सी यहां पर अपॉर्चुनिटी हाथ से जाती हुई, और फर्क दिखाई दे रहा है, जो एनर्जी और कमाल आज थाईलैंड ने फील्डिंग में किया, वो भारत ने शुरुआती ओवर्स में ही ठीक उसके उलट किया, एक आसान कैच छोड़ा। अगली गेंद एक्स्ट्रा बाउंस, इस बार इस गेंद पर सकपकासी गई नन्नापत, और गेंद को उन्होंने खेलने की कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं की, गेंद गई विकेटकीपर के ग्लव्स में। थाईलैंड का अगर हम जिक्र करें तो T20 क्रिकेट में इस गेंद के बाद जिक्र करेंगे। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट किया पॉइंट पर, फील्डर कोई रन नहीं। T20 इंटरनेशनल्स में थाईलैंड का जो उच्चतम स्कोर है वो 259 रन है, 4 विकेट के नुकसान पर। सिंगापुर के खिलाफ ये रन इन्होंने बैंकॉक में बनाए थे 2025 में। लेकिन अगर भारत के खिलाफ जिक्र करें तो भारत के खिलाफ उनका जो उच्चतम स्कोर है वो 74 रन, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन भारत के खिलाफ रहा है। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर।

0: बाहर निकलती हुई बैक ऑफ लाइन डिलीवरी कट करने के लिए गई, चूक गई बल्लेबाज, गेंद चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, अंपायर ने किसी वाइड का इशारा नहीं किया, ओवर समाप्त हुआ। तीन ओवर के बाद थाईलैंड का स्कोर है 16 एक विकेट के नुकसान पर। तो जो स्टैट इस वक्त पंकज ओपी शर्मा ने हमें प्रदान किया है कि इनका हाईएस्ट टीम टोटल तो 259 रन है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने आसमान की बुलंदियों को जमीन पर लापटक दिया। और ये भी बताया ओपी शर्मा जी ने कि भारत के खिलाफ उनका उच्चतम स्कोर 74 रन।
1: Yes, of course, this is good news for the Indian fans, but you never know. The funny game called cricket, and that too, the shorter format of the game. 16 for the loss of a wicket, Thailand after three overs, and Nanapata and Maya Panita there in the middle. And luck definitely favors the brave, and Thailand today have got that slice of luck. They had it when they were bowling and fielding, and even now when they are batting, as Nandini gets ready for the next over. And in fact, it's been caught. What a catch! Driven towards point by Maya Panita. She can't get it over there by Pratika Rawal. She jumps up in the air and plucks that ball out of thin air to take that catch as India take the wicket. Nandini gets a wicket on her very first ball. Look at the antithesis. Deepti Sharma dropped a regulation catch in the earlier over and slip, and there Pratika Rawal jumping up at the right moment, timing it right at point as Maya Panita wanted to drive it uppishly. These are the power play conditions, and Thailand, they lose their second wicket in the form of Panita Maya. 16 for the loss of two wickets, but this is good comeback by India. You have given a target of 160. You want to win big. Might as well get them out as early as possible.
0: निश्चित तौर पर। और जिस तरह की गेंदबाजी अभी तक हुई है, गेंदबाजी में कोई दोष अभी तक नहीं नजर आया है। बेशक फील्डिंग में एक कैच छूटा है दीप्ति शर्मा से, लेकिन ओवरऑल जो दो गेंदबाजों ने अभी तक गेंदबाजी डाली है, दोनों तेज गेंदबाजों ने बहुत ही सदी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में उभर रहा है थाईलैंड के लिए भारतीय गेंदबाजों का सामना करने का, जहां तक प्रश्न है।
1: Yes, so 16 for the loss of two wickets. Fourth over is in progress as captain, in fact, Apisara it is who comes at number four, and she in fact edges that ball towards backward point gully area to open her account. And of course, batting is not really the strength for Thailand, but what they have done is they have made a statement in their bowling, and Apisara Suwan Chonrathi is the name of the next player, 46 matches for her. And in fact, Thailand always work on a team effort. They're not kind of dependent on only one big player. They kind of try and combine, get those smaller partnerships, and that is what they will have to do. A short wayward pulled by Nanapath in the short fine leg zone for four runs as Thailand is not giving up. They might be losing wickets, but they're going after the bad deliveries and getting some maximum runs out of it, trying to kind of get that extra yard of pace. Nandini sort of strayed down on the leg side, and Nanapath was quick to pounce on that. Four boundaries for Thailand in 21 runs. Power play conditions, they got to use it as much as possible. The fans, the few fans who have come all the way from Thailand to support their team, really good to see, because the fans, the support is what makes the team. This time, good ball, completely foxed there, Nanapath. The ball cut in sharply, a bit of bounce, very awkwardly played, and the ball actually went past the flying hands of Deepti Sharma in slip and fell short of the fielder at short third. But this particular end from where Nandini is bowling, the ball does bounce a bit, and this is going to be interesting how these pitches are going to play over the next few days, because the other matches will be very, very interesting. Nanapath gets the ball way outside the off stump, wanted to go for an expansive drive, and missing it, of course, broad ball. But Nandini, kind of, she's also trying to do a bit extra. Bowling maybe outside the off stump a bit too much, spraying down the leg side. But nevertheless, she's got a wicket on the very first ball. And when you get a wicket early on, nobody complains. Nanapath batting on 10, Thailand 22 for the loss of two wickets. Fourth over is in progress. This is the Asia Cup 2026, the Women's Asia Cup, as India are in their first encounter of this particular tournament. Nandini gets the ball on the middle stump, not really very short, but somehow Nanapat manages to pull it uppishly over the fielder at short mid-wicket, and she will get a single on that delivery. Apisana at the other end will have to kind of hold on. Thailand can't really afford to lose any further wickets, even though they might not get runs for the next few overs. Just hold on forward and try to get back a bit of momentum, because 160 is really very big for them. You mentioned 74 is their highest against India, so they will have to really double up. A mammoth effort will be required for Thailand. Lovely drive there, a fuller length delivery, but straight to the fielder at extra cover. No run on that occasion. End of over number 4, and Thailand are 23 for the loss of 2 wickets. They're chasing 160. Now, things do happen. This pitch is really very interesting. If you wait here, if you stay here and get your eye in, just like Shefali got, there are runs there. But if you're not really able to judge the bounce on this wicket, Iqbal, batting can be a bit of a challenge.
0: निश्चित तौर पर पंकज, और एक छोर से हम देख रहे हैं शुरुआत से ही कि थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस है, और एक छोर पर थोड़ा सा लो बाउंस दिखाई दे रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि थाईलैंड को प्रयास करना होगा कि वो रुक कर खेलें, जम कर खेलें, पूरे 20 ओवर तक बैटिंग करने की कोशिश करें, और ये अपने आप में एक अचीवमेंट होगी। इस मुकाबले का नतीजा क्या होगा नहीं होगा, इस पर हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन अगर 20 ओवर की गेंद बल्लेबाजी थाईलैंड कर लेता है भारत के खिलाफ, तो ये बड़ी बात होगी उनके लिए। नए ओवर की शुरुआत हुई है, पहली गेंद को ऑन साइड में घुमाया, एक रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटना चाहती है, और दूसरा रन भी पलट कर पूरा कर लिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और इन दो रनों के साथ नानापत पहुंच गई है 13 पर, और थाईलैंड का स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारत ने अपना दूसरा विकेट गंवाया था, तब भारत का स्कोर 91 था, लेकिन थाईलैंड ने बहुत जल्दी जल्दी 2 विकेटें गंवाई हैं। फिलहाल क्रांति गौड़ अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से घुमाया, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन ऑन ड्राइव अपिश मिड विकेट के ऊपर से, और चौका मिलता हुआ नानापत को। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बावजूद भी मिड विकेट को क्लियर करने में कामयाब हुई, वरना ये कैच हो सकता था। इस बीच चौके के साथ स्कोर 29 2 विकेट के नुकसान पर। पांचवां ओवर चल रहा है, क्रांति गौड़ चली, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस वक्त एक खिलाड़ी स्लिप में नजर आ रहा है, वो खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा, जो कि स्लिप में इस वक्त फील्डिंग कर रही हैं। एक कैच उन्होंने छोड़ा है, 160 का लक्ष्य भारतीय टीम ने दिया है थाईलैंड को। क्रांति गौड़ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में फिर से पुल किया मिड विकेट पर, और गेंद एक बार फिर से गैप में निकलती हुई 4 रन। 2 बेहतरीन चौके नानापत ने मारे हैं क्रांति गौड़ को, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी इस बार, और इस गेंद को बढ़िया पुल किया 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ अब नानापत पहुंच गई हैं 21 की रन संख्या पर, और थाईलैंड का स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा प्रोडक्टिव ओवर ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खिलाड़ी के अगर जिक्र करें, नानापत ने तो 144 टी20 मुकाबले खेले हैं, 298 चौके लगा चुकी हैं ये अपने करियर में। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चली गेंदबाज क्रांति गौड़, ये गेंद नानापत के लिए फुल पिच डिलीवरी, बल्ले के जड़ से इस गेंद को खेला, ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है, एक रन सिर्फ मिलेगा इस मर्तबा। और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नानापत खेल रही हैं 21 पर, और अफिसारा स्वांचन राठी इस वक्त बल्लेबाजी कर रही हैं 1 पर। एक बार फिर से क्रांति गौड़ इस ओवर में अंतिम बार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद, और इस बार स्टंप पर आती हुई इस गेंद को लगभग खड़े खड़े अपने स्थान पर खेला कवर्स पर, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त हुआ पांचवां, और 5 ओवर्स के बाद थाईलैंड का स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मौजूदा रन गति 6.8 रन प्रति ओवर का है, और रिक्वायर्ड रेट की बात करें तो 8.04 का रिक्वायर्ड रेट है। तो अगर विकेटों पर अंकुश लगाए रखती है थाईलैंड की टीम पंकज, और जिस तरीके से इस ओवर में 11 रन आ गए, दो चौके बड़ी आसानी के साथ मारे, इसी तरह से बाउंड्रीज आती रहीं, रन्स सिंगल्स डबल्स के जरिए आते रहे, स्कोर बोर्ड को चलायमान रखा, तो इस मुकाबले में एक तरह से बने रहने की जो कवायद होती है वो कम से कम कर पाती हुई थाईलैंड की टीम जरूर नजर आएगी।
1: No doubt about it, Iqbal, and the fact remains that the exuberance of the Thai players is very important. Now, Thailand is not really a traditionally cricket-playing nation. They've adapted to the game really, very well, and they've really improved and come up and standing up tall to Indian bowlers of international class and hitting them. And Nanapath has shown some real great confidence as Harmanpreet Kaur now gets Sri Charani into the attack. 42 wickets for her, really very good bowler. The Sri Charani 4 for 12 is the best, and it's going to be interesting how the Thailand batters will tackle the Indian spinners. Now we are talking about which Indian spinner will the Thailand batters target. Is Sri Charani the one? With a slip, left arm around the wicket, here she comes. Nanapath goes for that big sweep, and there is a lot of protection there, deep mid wicket, deep backward square leg. So India is also trying to play to what the Thailand batters would be looking forward to, and the fielding placement is pretty good. But right now Nanapath batting on 23 is the fulcrum for Thailand. She's the pivot around where all the batters will have to work around. Apisara nicely plays it square the wicket, doesn't get runs, but as you said, she has to stand at one end, Iqbal, you're right, she has to just give some good support. Apisara as they call her, she's a very, very good all-rounder. Nanapath at the other end batting on 23, Thailand 35 for 2, Sri Charani gets ready to bowl, left arm round the wicket. Flatter delivery, thought that Apisara would probably run down the wicket, dance down the wicket for a big shot, but a lot of conversation going on between Nanapath and Apisara. That's good to see that both the batters are communicating, because the pitch is, I wouldn't say really very challenging, but there are certain spots where you got to be careful about. Thailand have a target of 160 runs to win this match. Trying to go across, big appeal, and as it hits the pad, Apisara deep inside the crease. The appeal took some time for the umpire, but the finger goes up. India pick up a wicket. Sri Charani picks up a very, very important wicket. Kept Apisara locked, cramped inside her crease, stump to stump, and in trying to play across, Apisara was caught right plumb in front, and umpire had no problem whatsoever. So India doing the needful, putting the pressure, and they are getting the wickets. The third wicket falls. Apisara goes for one. She was not looking really very comfortable, but the fact remains that could she have kind of survived there for a bit long, Iqbal, and give some support to Nanapath at the other end. But India pretty much on course with that third wicket.
0: जी बिल्कुल, और यही चैलेंज होने वाला है थाईलैंड के लिए। भारतीय गेंदबाजी के सामने खास तौर पर उनका टिकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। श्री चरणी बहुत कम समय में बहुत जबरदस्त उन्होंने अपना एक रेपुटेशन बनाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और काफी कामयाब रही हैं। अभी तक की जो जर्नी रही है श्री चरणी की वो बहुत ही कमाल की रही है। और आप जो सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं भारत की तरफ से, वो अभी आने बाकी हैं। दीप्ति शर्मा, जिन्होंने अभी अभी एक कैच छोड़ा, वो मैदान पर अभी गेंदबाजी करने के लिए आई नहीं है। तो दोनों स्पिन गेंदबाजों के सामने इतना आसान थाईलैंड के लिए होने वाला नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कितना रेजिस्टेंस ये दिखा पाते हैं, कितना यहां पर धैर्य दिखा पाते हैं। फिलहाल अगली गेंद इस बार बाहर की तरफ निकलती हुई, चनिदा नई बल्लेबाज हैं, उनको छोड़ती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, और ये डॉट डिलीवरी। हालांकि क्या हाइट ज्यादा थी जिस गेंद पर LBW दिया गया, हालांकि बिल्कुल बैकफुट पर धंसी हुई थी क्रीज में बल्लेबाज। अगली गेंद, अफिश खेला लेकिन गैप में, और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर, चार रन के लिए। शेफाली वर्मा, दौड़ लगाई जरूर उन्होंने लेकिन गेंद का पीछा नहीं कर पाई। एक लकी बाउंड्री आप कह सकते हैं अपिश, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद निकली और ये चौका मिला आखिरी गेंद पर। छह ओवर का खेल यानी कि पार प्ले के ओवर्स खत्म हो गए हैं और पावर प्ले में थाईलैंड ने 39 रन बनाए हैं और 3 विकेट गंवा दिए हैं, तो निश्चित तौर पर पावर प्ले थाईलैंड के नाम नहीं रहा है, ये पावर प्ले भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा है पंकज।
1: Yes, but the efforts from the Thailand girls has been pretty good. Now, as we have been constantly saying, if you're targeting or if you have to reach 160 runs, you've got to kind of keep your wickets and play out the 20 overs. But nevertheless, comparatively, India was 65 overs, Spiti Nandana and Shefali gave a good start, and then Pratika and Shefali also had a good kind of a partnership. But Prema Rawat has been brought into the attack, leg spin, leg break bowler, and India would be looking forward to kind of finish this under 100. That will be a good thing, considering the fact that they'll get a good net run rate advantage because of that. So Nanapath is batting on 23 of 15 deliveries. Now she is the one batter that India will have to target.
0: प्रेमा रावत इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आई हैं। पहली गेंद ऑन साइड में इस गेंद को टर्न किया, गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग के इलाके में, एक रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज ने और इस एक रन की मदद से थाईलैंड का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नानापत के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली भी है। सबसे ज्यादा अगर इम्प्रेसिव कोई बल्लेबाज नजर आई है तो वो नानापत नजर आई है, बहुत ही शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की है। प्रेमा रावत अब गेंदबाजी करेंगी चनिदा को, जो कि 4 रन बनाकर खेल रही हैं। एक चौके के साथ उन्होंने अपना खाता खोला पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। 7वां ओवर पारी का चल रहा है, रनों की रफ्तार 6.49 रन प्रति ओवर, तो अब से यहां पर हो सकता है अब देखें कि ज्यादातर स्पिन गेंदबाज ही गेंदबाजी करते हुए नजर आए। इस बीच अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, खेला पॉइंट पर, थोड़ी सी फंबल, फायदा उठा करके रन पूरा करना चाहती थी, लेकिन जब देखा कि दोबारा फील्डर गेंद पर कंट्रोल हासिल कर चुकी हैं, चनिदा ने अपना इरादा बदला और इस गेंद पर कोई रन नहीं। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर थाईलैंड। टॉस जीता था थाईलैंड ने पहले बॉलिंग चुनी थी, भारत ने 159 रन बनाए 9 विकेट पर। इस बीच अगली गेंद प्रेमा रावत की, इस बार गेंद जाकर के पैड पर टकराई, लेकिन साफ तौर पर गेंद लेग स्टंप के बाहर टप्पा खा रही है और ऐसे में एक LBW की जो अपील थी वो उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम। 160 रन का लक्ष्य इस वक्त थाईलैंड के सामने है। थाईलैंड 3 विकेट गंवा करके थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन क्या वापसी कर पाएगी थाईलैंड की टीम? भारत के खिलाफ उनका उच्चतम स्कोर 74 रन ही है, क्या उसको पार कर पाएंगे इस ओवर की अगली बॉल के साथ? चली प्रेमा, फ्लाइटेड गेंद और इस बार इस गेंद को डाउन द ग्राउंड ड्राइव किया, लेकिन मिड ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग कप्तान हरमनप्रीत कौर की, कोई रन बनाने का मौका नहीं है बल्लेबाज चनिदा के पास। चनिदा ने 4 रन बनाए हैं, अच्छी फ्लाइट दे रही हैं प्रेमा रावत। एक बार फिर से तैयार हैं प्रेमा, सामने चनिदा, ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्पिन के सहारे कवर के ऊपर से उछाला, लेकिन स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पर है। एक रन सिर्फ लेने का मौका चनिदा के पास। चनिदा पहुंची अब 5 की रन संख्या पर और स्कोर बढ़ता हुआ थाईलैंड का 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ प्रेमा, सामने है नानापत, ये गेंद और इस बार नानापत ने इस गेंद को पुल करना चाहा, टॉपेज लगा, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के आसपास कोई फील्डर नहीं, विकेट कीपर जब तक गेंद को जाती उठाती। एक रन दौड़ करके नानापत ने पूरा किया। 7 ओवर का खेल इसी के साथ समाप्त हुआ और 7 ओवरों में थाईलैंड ने 42 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। नानापत 17 गेंदों पर 25 रन और चनिदा 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रही हैं।
1: India seems to be in control, no doubt about it, with the 3 wickets, and the fact remains that the Thailand batters will really have to play something really extraordinary in order to in fact reach that 160 runs target that has been given to them. But it's a good outing for them, and if you look at the Thailand side, their core has been the same for the last 3-4 years, you know. Maya, Nanapath, Chanida, all of them have been playing together for a long time, and that has given them a lot of confidence to come up and take up teams like India, as they are 42 for the loss of 3 wickets and they're chasing 160. Sri Charney now will be bowling to Nanapath, who's batting on 25. This is going to be a very good contest, because Sri Charney will definitely try to fox Nanapath. Will Nanapath continue to be aggressive? A slip in place. Oh, tries to go for that big swing, but then controls and checks a shot. realizing that the length wasn't right, the ball just pops up towards short extra cover. Sri Charney also trying to lure Nanapath into the trap. This is going to be an exciting contest between the two. Flight there, driven, and what happened was Nanapath tried to drive it across, didn't connect. The ball just goes off the boot of Richa Sharma into the slips where Deepti Sharma is there, and she catches this one. But then it doesn't make much of a difference because there was no willow which got in touch with the ball. Coming down to track, converting into a full toss, Nanapath will get a single as the ball rolls towards long off. That takes Thailand to 43 for the loss of 3 wickets, and this was expected, Iqbal, because India, with their strong bowling lineup, would have made life difficult for Thailand, and that has been the case. But now Thailand have an interesting opportunity. OP Sharma, our statistician, told us 74 is the highest score against India. Can the first step be going beyond that? And then, of course, moving towards the target of 160. Going for the big shot, Chanida, high in the air towards mid on, straight into the hands of Smriti Mandhana, who is very, very happy to accept that. In trying to be aggressive, Chanida falls at 5, and Thailand lose their fourth wicket at the score of 43 in the 8th over.
0: और जिस तरीके से विकेटें गिर रही हैं, ननपत को छोड़ करके अगर लगातार उनके साथ ही यूं ही बिछड़ती रहेंगी, तो फिर जो 74 रन उनका उच्चतम स्कोर है, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं पंकज, उस स्कोर को पार करना शायद इतना आसान नहीं होगा थाईलैंड की टीम के लिए, क्योंकि एक छोर पर आप देखें तो 20 गेंदों पर 26 रन बना करके 100 प्लस की स्ट्राइक रेट इन विषम परिस्थितियों में, जबकि टीम एक छोर पर लगातार विकेट गंवा रही है, वो बनाकर खेल रही है, लेकिन दूसरे छोर पर तू चल मैं आया वाली कहानी चल रही है, एक के बाद एक लगातार विकेटें गिरती चली जा रही है.
1: And of course the pressure is 160 runs, Iqbal, because it's a long journey. And Thailand did was they bowled really very well, and they thought that they could kind of roll over that confidence into their batting. And I think early on the first wicket was somewhere which was very, very difficult. Nathakan was cleaned up. That was something very important for Thailand, as the new batter is in 43 for the loss of 4 wickets. Naomi Hamilton is the player who has come up for Thailand, and this is going to be an interesting one. Naomi Hamilton has a decent record, and she's come there in the middle order. 8th over is in progress. Sri Charney bowling with a slip, left arm round the wicket. Good ball. And the way Sri Charney bowls, lovely action. She's a tall bowler, and the kind of angle that she creates, also the fact that she gives a nice flight which comes quite high, and that pushes the batter on the back foot initially. It becomes very difficult, and if she's able to get a bit of turn and bounce, then she becomes very, very difficult to face. Just one run in this over and a wicket for Sri Charney. Hamilton on strike, slightly short, nicely pulled towards the onside, and that will help Naomi to open her account. End of over number 8, 44 for 4, Thailand chasing 160. And of course, 160 is a huge, huge climb like Mount Everest for Thailand. But if they could have got a good start in the power play, and probably they wouldn't have lost the wicket, the first wicket, that probably could have helped them. But nevertheless, cricket is a funny game. The second phase of the game, the next 5 overs, are going to be very crucial for Thailand.
0: जी हाँ, बिल्कुल. और जिस तरीके से विकेटों का पतन रहा है, वो निश्चित तौर पर थाईलैंड के लिए बहुत बहुत ज्यादा कोई खुशखबरी तो नहीं है उनके लिए, क्योंकि लगातार अंतराल में विकेट गंवाए हैं थाईलैंड ने. पहला विकेट 4 पर, दूसरा विकेट 16 पर, तीसरा विकेट 35 पर, चौथा विकेट 43 पर. तो रेगुलर इंटरवल में, हर अंतराल में आप देखें तो विकेटें गिरती रही हैं थाईलैंड की, जो कि बहुत अच्छी खबर उनके लिए नहीं है. इस वक्त भारत की सबसे अनुभवी गेंदबाज दीप्ति शर्मा को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए. 150वां मुकाबला खेल रही हैं दीप्ति शर्मा. एक अचीवमेंट है उनके लिए. पहली गेंद के साथ तैयार, पहली गेंद फ्लाइटेड, अंदर आई, पैड पटक रही, एलबीडब्ल्यू की अपील, और इसी के साथ आउट. 150वें मुकाबले को इससे बेहतर और क्या सेलिब्रेट कर सकती थी वो, कि आई और पहली बॉल पर ही विकेट उड़ा ले गई है पंकज.
1: Naomi Hamilton pushed on the back foot, crammed for space, a good ball there to start, and plumb in front, and Naomi Hamilton had no clue whatsoever. I think this was one of the easiest decisions for the umpire, as half the Thailand side is back in the pavilion.
0: Naomi Hamilton matra ek run bana karke patbadha uth hui hain Deepti Sharma ki gend par. तो जो विकेटों का पतन का सिलसिला था और जिसका ब्यौरा मैं कुछ देर पहले दे रहा था, ये देखिए एक और विकेट एक रन के अंतराल में. तो अगर इस तरह की क्रिकेट खेली जाएगी तो फिर निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि थाईलैंड को अपनी बैटिंग में खास तौर पर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि गेंदबाजी उनकी अच्छी है इसमें कोई दो राय नहीं है, फील्डिंग में वो अपना जान झोंकती हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां तक बैटिंग का सवाल है, और अमूमन इस तरह की नई टीमें या जो इतना एक्सपोजर जिन टीमों का नहीं है उन टीमों के लिए बैटिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है. फिलहाल नए बल्लेबाज ने इस गेंद को पुश किया, ऑलमोस्ट रिटर्न कैच था ये. दीप्ति शर्मा ने अपनी बाईं तरफ डाइव लगाई लेकिन बाल बाल बच गई हैं बल्लेबाज, और ऐसे में ये विकेट नंबर 6 गिरते गिरते रह गया. अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में पुल किया, शॉर्ट मिड विकेट पर कप्तान मौजूद, कैच कर लिया हरमन ने, और चाइहान आते ही मात्र दूसरी गेंद का सामना करते हुए आउट हो गई हैं. ये छठा विकेट थाईलैंड ने गंवा दिया है 44 की रन संख्या पर.
1: Yes, very difficult for the Thailand middle order to negotiate with someone like a Deepti Sharma, and a simple catch there. Chaihan not really able to get used to this particular track, and another wicket falls. India definitely kind of pressing it up, turning the screws and tightening the grip on this particular match.
0: निश्चित तौर पर, और दीप्ति शर्मा के लिए एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है. 150वां मुकाबला पहले ही ओवर में 2 विकेटें ले चुकी हैं, और इन 2 विकेटों के साथ एक बड़ा कीर्तिमान अब उनके नाम के आगे जुड़ गया है. पंकज ये जानकारी दे रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा, हमारे स्कोरर रजित सिन्हा के साथ, कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दीप्ति शर्मा के अब 171 विकेट हो गए हैं, और ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज यानी नंबर 1 विकेट टेकर हो गई हैं T20 क्रिकेट में. नई बल्लेबाज लाउमी ने इस गेंद को डिफेंड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं. तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कारनामा आज दीप्ति शर्मा ने किया है. नंबर 1 जहां तक सबसे ज्यादा विकेट लेने का सवाल वो बन गई है. अगली गेंद ऑन साइड में पुल किया लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर इस बार कैच ड्रॉप हो गया.
1: नंदिनी शर्मा वॉज देयर एंड शी रियली फ्लू टू हर राइट and almost got a hand to that ball, and just good attempt there, just slipping out of her grip.
0: Aakhri gend, aur is baar is gend ko defend kiya, off stump ke bahar ye gend thi, is gend ko surakshatmak dhang se back to the bowler khela, koi run nahi, over samapt hua 9, aur 9 overon ke baad Thailand ka score hai 44 run, 6 wicket ke nuksan par. ये 6-7 हो सकता था अगर नंदिनी ने ये कैच थाम लिया होता, लेकिन दीप्ति शर्मा कमाल की शुरुआत की है उन्होंने. पहले ओवर में 2 विकेट लिए और एक भी रन नहीं, विकेट डबल विकेट में डन हुआ.
1: वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दीप्ति शर्मा, यू मेंशन अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हेन विल द बेस्ट इंडियन स्पिनर कम इन, एंड शी केम इन एंड हैज गिवन यू अ डबल बोनांजा. सो थाईलैंड हियर स्ट्रगलिंग, नो डाउट अबाउट इट, एंड बैटिंग वाज नेवर देयर स्ट्रांग पॉइंट, एंड दे हैव बीन ट्राइंग टू इवॉल्व थ्रू दैट. दे हैव गॉट सम वेरी गुड बैटर्स नाउ एट द टॉप, बट जनरली इन देयर बैटिंग डिपार्टमेंट दे ऑलवेज वर्क ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप्स, एंड दैट कुडंट रियली हैपन टुडे एज 6 विकेट्स आर डाउन चेजिंग 160, एंड द थाईलैंड probably had a lot of problem right from the beginning. Prema starts a new over, coming down the track, Nanapath drives it back to the bowler. She's been stranded at the other end. She's been watching her colleagues come and go. Nanapath is batting on 26 of 21. She will try to now to break the shackles. 44 for 6, goes for a big sweep swing under edge, and the ball gets entangled into her pads. So wickets have fallen at regular intervals. Naomi Hamilton was the first victim, and then in fact Chaihan was the next to go in the last over we're talking about. But right now Thailand seems to be sort of stranded in mid waters. They really don't know where to go, and that is what the Indian spinners, the power of the Indian spin department is all about. The opening pair of Kranti and Nandini also did a good job, and India will be happy that even their batting in the middle order was not that great. Their bowling definitely has done the needful. 10th over is in progress. Thailand 44 for 6.

0: Coming down the track, driving it hard once again, straight to the bowler, good fielding. Nana Pat now seems to be trying too hard. She's trying to hit the ball very, very aggressively so that she can get the runs, because she knows that if Thailand don't keep on scoring runs, survival will be a big, big problem. Four dot balls in this over. This time, cuts it hard and the ball falls short off shot third. Bharti was there. And that could have been another wicket, but Nana Pat struggling. She didn't take the run, and the point here is she is the lone warrior now as far as Thailand is concerned. She's batting on 26, 44 for 6. This could be a maiden over from Prema. Coming down the track, and once again, good fielding of her bowling in the follow-through. A maiden over, number 10, as Thailand, 44 for 6, struggling. As expected, but the fact remains that this particular match, Iqbal, has really exposed a lot of things. Good things from the Thailand side, their fielding and their bowling, and a bit of fragility in the middle order for India. So this is going to be a very interesting time. You mentioned we are going to India is going to play Hong Kong and then Pakistan, as in this particular group, the top two will go into the semi-finals in this Women's Asia Cup of 2026. So overall, it's a good outing for India, but definitely the Indian team seems to sort of lose out on very simple opportunities of scoring really very big, and that probably needs to be corrected.
1: जी बिल्कुल, भारत ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की आखिरी 10 ओवर्स में, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारत की गेंदबाजी जिस प्रकार से है और जिस तरह की गेंदबाजी भारत ने कर दी है, साफ तौर पर कहीं से कहीं तक खड़ी होती हुई थाईलैंड की टीम नजर नहीं आई है भारत की गेंदबाजी के सामने. और उस बात की गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं कि नना पत एकमात्र ऐसी बल्लेबाज हैं जो दहाई के आंकड़े में पहुंची हैं, बाकी सभी बल्लेबाज सिंगल डिजिट में यानी कि इकाई के आंकड़े में आउट हुई हैं. आप चाहे नताकन चांतम की बात करिए, 4 रन बनाए उन्होंने, माया ने 6 रन बनाए, इसके अलावा सुनी तुरंगा ने 5 रन किए, हैमिल्टन ने 1 रन बनाया, चाईहान ने 0 किए. तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो विकेट हैं वो लगातार अंतराल में गिर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज कुछ योगदान भी अपनी तरफ से नहीं प्रदान कर पा रहा है, एक्सेप्ट नताकन जिन्होंने की बेहतरीन बैटिंग, बल्कि माफ कीजिएगा, नना पत ने बहुत ही शानदार बैटिंग की है, 26 गेंदों पर 26 रन. लेकिन जैसा आपने कहा कि अब उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि एक छोर से आपने 6 विकेट गंवा दिए हैं और इसके अलावा कोई खिलाड़ी जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो नन्ना पत के ऊपर प्रेशर है. नंबर 3 पर वो आई थी बैटिंग करने के लिए, अभी अपने सामने उन्होंने विकेटें गिरते हुए देखी हैं, तो डेफिनेटली अब उनको भी थोड़ा सा जरूर इस बात को लेकर के प्रेशर महसूस हो रहा होगा कि आखिर इस सिचुएशन में करें तो करें क्या, रन के लिए जाएं, रोकें, किसी में भी तो फायदा नजर नहीं आ रहा. रन के लिए जाते हैं, आउट होने का खतरा रहता है और बहुत दूर है मंजिल. अगर रोकते हैं, 4 विकेटें बची हुई हैं, कोई टिकने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल में इस वक्त नना पत नजर आ रही हैं. वहीं भारत की गेंदबाजी कमाल की रही है. 3 ओवर क्रांति गौड़ ने डाले, 21 रन 1 विकेट. नंदिनी शर्मा 2 ओवर 13 रन 1 विकेट. श्री चरणित 2 ओवर 7 रन 2 विकेट. प्रेमा रावत 2 ओवर 1 मेडन 3 रन, कोई विकेट नहीं. दीप्ति शर्मा 1 ओवर 1 मेडन और 2 विकेट उन्होंने हासिल किए. तो भारतीय सभी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है. हालांकि प्रेमा रावत को कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन उनकी गेंदबाजी भी देखें, 2 ओवर में 3 रन, 1.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो रन खर्च कर रही हैं. तो भारत का पूरा कंट्रोल इस मुकाबले में है, भारत पूरी तरह से नियंत्रण में इस मुकाबले में है. अभी भी 60 गेंदें बची हैं और 60 गेंदों पर 116 रन बनाने हैं. रिक्वायर्ड रेट अब लगभग 12 रन प्रति ओवर का हो चला है थाईलैंड के लिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है उनके लिए इस टारगेट को अचीव करना. फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक नए ओवर की शुरुआत हो रही है और नंदिनी शर्मा को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए. नंदिनी ने एक कैच छोड़ा मिड विकेट पर, अच्छी कोशिश थी, डाइव लगाते हुए हाथ में गेंद लगभग आ गई थी. अगर वो कैच ले लिया जाता तो एक ही ओवर में 3 विकेट हो जाते दीप्ति शर्मा के. नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद फुल पिच डिलीवरी, ऑन ड्राइव किया, गेंद जा रही है काव कॉर्नर क्षेत्र में, तोड़ करके रन पूरा किया बल्लेबाज ने. 1 रन मिलता हुआ लाउमी को और इस 1 रन की मदद से लाउमी का खाता खुला और थाईलैंड का स्कोर 45 रन 6 विकेट के।

नुकसान पर। 11वां ओवर ये है ये पारी का और नंदिनी शर्मा अपना ये दूसरा बल्कि तीसरा ओवर डाल रही हैं। इस ओवर की अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, धीमी रफ्तार की गेंद को कट किया, गेंद गई है स्क्वायरिश थर्डमैन पर भारती के पास। एक रन आसानी के साथ पूरा किया ननापत ने और इस एक रन की मदद से ननापत पहुंच गई हैं अब

0: 27 गेंदों पर 27 रन उन्होंने बनाए हैं और इस पारी में उन्होंने 4 चौके मारे हैं। इस ओवर की अगली बॉल नंदिनी की फुल पिच डिलीवरी, बेहतरीन ड्राइव, लेकिन कवर पर स्मृति मंदाना फील्डिंग कर रही हैं। गेंद को उन्होंने बड़ी आसानी के साथ रोक लिया, कोई रन नहीं मिलेगा लाउमी को। 11वां ओवर चल रहा है, नंदिनी शर्मा गेंदबाजी कर रही है, मध्यम गति की तेज गेंदबाज हैं और मुझे ये आवश्यकता समझ नहीं आई कप्तान को कि तेज गेंदबाज को क्यों लाना। स्पिनर्स बढ़िया गेंदबाजी कर रही हैं और आपके पास तीन तीन स्पिन गेंदबाज हैं, ये रणनीति क्या है? और वो भी लगातार फुल पिच गेंदें हो रही हैं तो बल्लेबाज को कोई परेशानी नहीं आ रही है। अगली गेंद एक और ओवर पिच डिलीवरी, ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, एक रन दौड़ करके पूरा किया लाउमी ने। लाउमी पहुंची अब 2 पर और थाईलैंड का स्कोर 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नंदिनी शर्मा को एक विकेट मिला है। पिछली 30 गेंदों पर थाईलैंड ने मात्र 13 रन बनाए हैं और 4 विकेट गंवाए हैं। बहुत ही खराब प्रदर्शन बल्लेबाजी में रहा है, मुश्किल दौर से उनकी बल्लेबाजी गुजर रही है। इस ओवर की अगली बॉल और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी बैक ऑफ लेंथ गेंद, कट करने के लिए गई बल्लेबाज नानापत लेकिन बीट हो गई, बाहर की तरफ गेंद स्विंग हो रही थी हल्की सी और कोई रन नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेटों के पीछे ऋचा घोष ने। नानापत 27 पर, लाउमी 2 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं, 47 रन 6 विकेट पर थाईलैंड। आखिरी गेंद करने के लिए अब तैयार हैं नंदिनी शर्मा, आगे गेंद पिच कराएंगी शायद मुश्किल होगी, लेकिन अगर थोड़ा बैक ऑफ लेंथ रखेंगी तो शायद बल्लेबाज को परेशान कर सके। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर धीमी रफ्तार की गेंद, गेंद को बड़ी आसानी के साथ कवर पर धकेला, कोई रन नहीं, ओवर समाप्त हुआ 11 ओवर के बाद। थाईलैंड 47 6 विकेट के नुकसान पर, इस वक्त लाउमी 2 पर हैं और नानापत 27 रन बनाकर खेल रही हैं। इस ओवर में 3 रन आए 3 सिंगल के रूप में और अभी भी 54 गेंदों पर थाईलैंड को 113 रन बनाने हैं। रिक्वायर्ड रेट अब 12.5 के ऊपर चला गया है, तमाम मुश्किलें थाईलैंड के साथ हैं, लेकिन तेज गेंदबाज को अचानक गेंदबाजी पर लाने की जो रणनीति है पंकज, इसके पीछे कारण आपको कुछ नजर आता है?
1: प्रोबेबली हरमनप्रीत कौर मस्ट बी थिंकिंग द थाईलैंड प्लेयर्स लाइक द बॉल टू कम आउट ऑफ द बैट, if they kind of give them that particular opportunity, they might go after the bowling, lose quick wickets, and that might create an opportunity. And India might also be trying to kind of figure out different combinations for different phases of the game, because they will be up against Hong Kong on the 3rd of September, then they take on Pakistan on the 5th of September. Those will be the league matches. So India probably trying different combinations as Prema is back into the attack. A lovely flight there as she bowls to Laumi, and Laumi drives it towards mid-off for, in fact, straight to the fielder. So 47 for 6. And in fact, Natha Khan, the opening batter, and Nanapat, these are the two mainstays of the Thailand batting order. And out of them, one didn't work. Nanapat is still there as the next ball driven towards sweeper cover by Laumi as she gets Nanapat back on strike. Now, 12th over is in progress. Nanapat will have to decide how long to continue. Will it be worth playing 20 overs or will it be worth going after? Because Thailand batters will have to target some Indian bowler. Will it be Prema? We'll have to see. Oh, good ball. Prema knew that Nanapat will be going for a big one. She was in position for that. But then a lovely flight, fuller length, and the ball turning square. Completely surprised Nanapat on that occasion. And that could have been very interesting. So Prema is also working extremely hard and trying to fox the batter. Coming down the track, but Prema just puts it a bit fuller, can't get underneath that ball, and Nanapat has to drive it back to the bowler. Now, Nanapat was playing really very well for the first 25 deliveries that she faced. But now, the dot balls are building up the pressure on her. Will she fall? Will she break down? Or will she retaliate? She retaliates with a lovely pull. Good fielding there by Kranti Gaur at the deep backward square leg region. She saves a definite boundary and Nanapat will get a couple of runs. So Thailand inching in closer towards the half century mark. But they have got the 50. Yes, so they have reached the half century. Thank you to our scorer Rajit Sinha. And overall, there were a bit of hiccups in that second phase when India was batting the middle order, but otherwise things have gone pretty well for India. Coming down the track, driving it towards long on for a single, and Nanapat will keep strike.

0: Jamaica. With that single, 12 overs have been bowled, 51 for 6. Thailand chasing 160. So overall, as far as the bowling is concerned, India has done the job, but the middle of the batting, a bit of fielding, drop catches, still haunting India, and they will really have to correct this as early as possible, because a bad day later on in the next phase of this particular tournament can be very, very dangerous, and India probably can't afford those kind of mistakes.
1: बिल्कुल सही बात है पंकज. और फिलहाल जो रणनीति थाईलैंड की नजर आ रही है वो ये, पिछले दो ओवर्स में अगर आपने गौर किया हो तो एरियल रूट का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, लगातार जमीन के सहारे स्ट्रोक्स खेल रही हैं दोनों बल्लेबाज, और कोशिश कर रही हैं कि जितना हो सके ओवर्स खेलें भारत के खिलाफ. फिलहाल श्री चरणी आ रही हैं गेंदबाजी करने के लिए, पारी का 13वां ओवर लेकर के. सामने होंगी ननापत जो कि 30 रन बनाकर खेल रही हैं. श्री चरणी की फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को खेला ऑफ साइड में और गेंद जा रही है स्वीपर कवर पर. एक रन दौड़ करके पूरा किया ननापत ने, और इस एक रन की मदद से ननापत पहुंच गई हैं 31 पर, और थाईलैंड का स्कोर 52 रन दो विकेट के नुकसान पर. 12.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर 110 रन था तीन विकेट के नुकसान पर. थाईलैंड का स्कोर 52 रन है छह विकेट के नुकसान पर. फिलहाल श्री चरणी एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रही हैं, लाउमी को गेंदबाजी करेंगी राउंड द विकेट आती हुई. श्री चरणी की अगली गेंद फ्लाइटेड, और इस बार बीट किया बल्लेबाज को, विकेट कीपर ने स्टंप्स उड़ा दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सुलिपोर्ण लाउमी का पिछला पैर क्रीज के अंदर मौजूद था, और ऐसे में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं बल्लेबाज के ऊपर. लेकिन बढ़िया इस बार टर्न मिला गेंदबाज श्री चरणी को, और पूरी तरह से टर्न के सहारे बीट किया बल्लेबाज को. इस ओवर की अगली बॉल के साथ तैयार हैं श्री चरणी. श्री चरणी का ये तीसरा ओवर है, 8 रन देकर के दो विकेट निकाली हैं इन्होंने. बाएं हाथ से राउंड द विकेट ये गेंद, और इस बार खड़े खड़े इस गेंद को खेला ऑफ साइड में पॉइंट क्षेत्र में. एक रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज लाउमी ने, और इस एक रन की मदद से लाउमी पहुंच गई हैं 4 पर, और थाईलैंड का स्कोर 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर. श्री चरणी लेफ्ट आर्म स्पिनर, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, दौड़ती हैं, शुरुआत करती हैं जाडेजा की तरह स्लो, और लगभग उसी प्रकार की उनकी उनका एक्शन भी है. अगली गेंद, और इस बार तेज गेंद, फ्लैटर ट्रैजेक्टरी, इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं ननापत को. 31 पर है ननापत. पांचवीं बॉल के साथ श्री चरणी तैयार, राउंड द विकेट, स्लिप को अब हटा लिया गया है. अगली गेंद फ्लाइटेड, और इस बार इस गेंद को फुल टॉस पर लेना चाहती थी, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगकर ऑन साइड में गई. विकेट कीपर ऋचा घोष गई हैं गेंद को उठाने के लिए, लेकिन तब तक दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर थाईलैंड की टीम का. दो विकेटें मिली हैं श्री चरणी को, अपने तीसरे विकेट की तलाश में हैं. आखिरी बॉल, तीसरा ओवर अपना डाल रही हैं. अगली गेंद, और इस बार फिर से टर्न, और एक्स्ट्रा बाउंस भी था, बीट कर दिया बल्लेबाज लाउमी को, और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ 13वां. 13 ओवरों के बाद थाईलैंड का स्कोर है 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर. ननापत 32 पर, 36 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 4 चौके लगाए हैं, जबकि लाउमी 4 रन बनाकर खेल रही हैं, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. रिक्वायर्ड रेट जिक्र करना क्या सही है पंकज, 15 से ज्यादा का अब रिक्वायर्ड रेट हो चुका है.
0: And Thailand, of course, I mean, you can't expect them to really go slam bang against a team like India, but they have done a very good job. It's very encouraging to see that they have kind of held on fort. Now, the challenge for India would be, they've got Thailand 54 for 6 after 13 overs. India shouldn't allow them to play 20 overs. Now, that is going to be another very important point as Prema Rawat starts a new over. Quicker, flatter, compact delivery, and Nanapath has to play it back to the bowler. So, the point here remains that can India quickly finish off the tail? Now, that's also an art, and that's also an art of making a statement. As Prema Rawat, the leg break bowler, flighted, comes down the track, Ninapat drives it, good dive there by Shri. In fact, Deep Shefali at mid-off, she gets a hand to it, otherwise that was a certain boundary. And a single there, as far as Ninapat is concerned. Very important here. In fact, they come back for the second run, because the ball trickled towards the boundary line, and Nanapath will have to keep the strike as long as possible. Try and go for the big hits, because you can't expect the lower middle order to do much. Quicker delivery down the leg side. Will it be called as a wide? Was very, very close as Nanapath tried to kind of go on the back foot and pull it. It's not given a wide. Very, very close, but an interesting decision. 56 for 6, Thailand. They need 104 runs to win this match. Coming down the track and almost a cotton bowl. Came down the track, found herself in an awkward position, cross-batted straight what Nanapath played, and it almost popped back to Prema. Probably she thought that it would come into her hands all the way, but that was not the case. Pulling that ball from way outside the off stump towards long on for a single. That will take Thailand to 57 for 6. And India probably are doing the right thing, but they need to kind of quickly finish this innings, Iqbal, because letting or allowing Thailand to play 20 overs will not really reflect good on the Indian bowling. Nicely driven, the next ball, which was a flighted one, a square drive there by Laumi. She will keep the strike at the end of over number 14. Thailand are 58 for the loss of 6 wickets. So Thailand were not really expected to kind of go really very hard initially, score 50-60 odd runs in the power play, but what they have done is they're showing the tenacity to stay there even after 6 wickets have gone. Now, can India finish it off quickly is what we'll have to see, and that will really help sharpen India's bowling for the upcoming matches in this particular tournament.
1: जी हाँ, बिल्कुल. और भारत की गेंदबाजी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है पंकज. लेकिन पिछले 5 ओवर और 3 गेंदें, यानी पिछले 5.5 ओवर से भारत को कोई विकेट नहीं मिला है. 33 गेंदें ये दोनों बल्लेबाज खेल चुकी हैं. इस जोड़ी ने 33 गेंदों का सामना किया है, यानी 5.5 ओवर का सामना किया है, और 14 रन बनाए. रन इतने मायने नहीं रखते यहां पर, क्योंकि रन्स अभी वैसे ही बहुत ज्यादा अब जरूरी हैं. 102 रन चाहिए 36 गेंदों पर, तो थोड़ा मुश्किल अब यहां पर लगने लगा है. इस बीच अगले ओवर की शुरुआत, पहली गेंद हवा में उछाल कर खेला, लेकिन स्क्वायरिश थर्डमैन से पहले गेंद टप्पा खाई है. एक रन मिलेगा बल्लेबाज को, तो इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 58, 6 विकेट के नुकसान पर. इस सिंगल की मदद से अब लाउमी पहुंची हैं 6 पर, 35 पर ननपत बैटिंग कर रही हैं. ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, और उस मुकाबले की भी कमेंट्री आप आकाशवाणी पर सुन सकेंगे. फिलहाल एक बार फिर से तैयार होती हुई गेंदबाज, ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, विकेट कीपर काफी ऊपर आ गई हैं, उन्होंने गेंद को गैदर किया. बीट हो गई बल्लेबाज इस मरतबा ननपत, और गेंद चली गई ऋचा घोष के दस्ताने में. तो इस साझेदारी ने रन कितने बनाए हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो टिकने की जो एक मंशा दिखाई है, पूरे 20 ओवर खेलने की जो मंशा दिखाई है, वो जरूर उसमें कामयाब नजर आ रही है. नंदिनी इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सामने है ननपत, ये गेंद, और इस बार ननपत ने इस गेंद को घूमकर मारा फाइन लेग क्षेत्र में. गेंद को बाउंड्री लाइन के आसपास रोक लिया गया, और इस दरमियान दौड़ करके एक रन पूरा किया बल्लेबाज ननपत ने, और इस एक रन की मदद से ननपत पहुंच गई हैं 36 पर, और थाईलैंड का स्कोर 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर. साझेदारी 15 रनों की हो गई है, 16 रनों की, इनफैक्ट 16 रनों की साझेदारी 36 गेंदों पर. पिछली 51 गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं आई है, पिछली 51 गेंदों से कोई चौका या छक्का नहीं लगा है. इस ओवर की अगली गेंद, फुल पिच डिलीवरी, रूम बनाकर खेला कवर्स पर, लेकिन गेंद को इनफील्ड के अंदर रोक लिया गया, कोई रन नहीं. तो साफ तौर पर अब थाईलैंड के खेल से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी रणनीति से यही लग रहा है कि वो 160 चेज करने के लिए नहीं जा रही हैं, वो 20 ओवर खेलने के लिए जा रही हैं. और शायद कहीं बैक ऑफ द माइंड किसी सपोर्ट स्टाफ ने या कोई टेक्निकल स्टाफ ने उनको जरूर बताया होगा कि देखिए, भारत के खिलाफ आपका उच्चतम स्कोर 74 है, उसको जरूर पार कर लीजिएगा. इस ओवर की अगली गेंद, उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन पर, इस बार आउट होने का खतरा, और इसी के साथ आउट. लाउमी आखिरकार अपने धैर्य को संभाल कर न रख पाई, धैर्य टूटा, एरियल रूट का इस्तेमाल और इस बार लॉन्ग ऑन पर शेफाली वर्मा के हाथों में एक आसान कैच और इसी के साथ ये सातवां विकेट जाता हुआ कुल 38 गेंदों का सामना किया, यानी कि 6 ओवर और 2 गेंदें खेल करके ये जोड़ी टूटी है। इस बार ये धीमी गति की गेंद का उंगलियों का इस्तेमाल ऑलमोस्ट लेग कटर की तरह ये गेंद डाली थी नंदिनी शर्मा ने और उसमें फंस गई लालच में, मारने की कोशिश हवा में और कैच आउट हो गई। सो विकेट नंबर 7 का पतन हो गया है। ये 15वां ओवर चल रहा है, नंदिनी शर्मा अपने कोटे का अंतिम ओवर डाल रही हैं और 3.5 ओवर में 18 रन दे करके उन्होंने 2 विकेट हासिल किए हैं। कोटे की अंतिम गेंद करने के लिए अब वो तैयार होंगी, नई बल्लेबाज सुनीता अब मैदान पर आई हैं। 15वां ओवर, अंतिम गेंद और अभी भी अगर देखें तो 100 रन दूर है थाईलैंड, 100 रन दूर, 60 है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद सुनीता के लिए और इस बार कॉट बिहाइंड की अपील, अंपायर ने उंगली उठा दी और इसी के साथ सुनीता आउट। नंदिनी शर्मा को लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हैट्रिक पर, लेकिन अब उनके पास ओवर ही नहीं है इस मैच में।
2: सो विल दैट हैपन इन द नेक्स्ट मैच? क्विक वन देयर, the ball just cutting away and Sunida had no chance whatsoever. She just poked at it, outside it, and good catch in the end there by Richa. And back-to-back wickets for Nandini. 15 overs, Thailand 60 for the loss of 8 wickets now. This is probably a quick finish here and India doing pretty well, Iqbal. And Nandini in fact got that back of the hand ball in the last penultimate delivery, there was a wicket and this was a quick leg cutter. So she's really using all her variations and she has got a couple of quick wickets for India.
1: तो भारत की तरफ से सभी गेंदबाजों को विकेट मिला है प्रेमा रावत को छोड़कर के। प्रेमा रावत ने कोटा भी हालांकि पूरा कर लिया है अपना, 4 ओवर में 1 मिडन 11 रन, कोई विकेट नहीं। क्रांति गौड़ के पास 1 ओवर है, 1 ओवर श्री चरणी के पास है और दीप्ति शर्मा के पास 3 ओवर्स बचे हुए हैं। तो साफ तौर पर एक छोर से अब दीप्ति शर्मा ही नजर आएंगी, अगला ओवर लेकर के दीप्ति शर्मा आएंगी। फिलहाल ननापत 36 रन बना करके अभी भी मैदान पर मोर्चा संभाले हुए हैं। नंबर 3 पर आई थी बैटिंग करने के लिए, लेकिन कोई साथी है कि टिकने का नाम नहीं ले रहा।
2: Kranti Gowd is back into the attack and Nanapar tries to go for that big heave. They go for the run, direct hit, and Smriti Mandhana gets a run out there. So, but the problem here is that Onicha and Nanapath were there in exactly at the center of the pitch. The umpire will have to figure out who is the one who has to go back, because the throw was at the non-striker's end. Did Onicha, who was at the non-striker's end, took off and crossed over, is what both the umpires will have to look at for. In fact, Nanapath tried to go for a big shot. The ball went towards mid-on at Smriti Mandana's position and she had a direct hit. There was a bit of a confusion between both the batters and a direct hit has thus the needful. Now the third umpire of course need not give the decision whether it's out or not. Yes, it's a definite out, but who has to walk back is going to be the big question. Cricket is a funny game, a lot of rules, regulations, everything has to be taken into consideration, and I guess Nanapath crossed over a bit, that's what looks prima facie, and the umpire now looking at the technicalities, discussing amongst themselves, and the third umpire, as the replay will make it much more clearer. And Onicha didn't want the run, Nanapath started off and then decided not to take the run, and both the batters were stranded in between. Smriti Mandhana had a very simple throw at the non-striker's end, and there is a wicket which has fallen, there's no doubt about it, but who has to walk back is now what is being discussed. So India in fact doing really very well. In fact their bowling performance has been much more sharper than their batting, there's no doubt about it, but the fact remains that a top team like India with the contenders will have to really improve their batting very, very quickly. So Smriti Mandhana gets the ball. We are watching the replay and trying to kind of figure out. Looks like Onicha didn't cross over. But if Onicha is not ahead of
0: Nanapath, who walked, who ran from the other end. That's what the umpire has to figure out. It looks like Onicha, who started from the non-striker's end, did not cross her partner Nanapath at the center. But we'll have to figure out who's going to walk back. So it's going to be interesting. And these kind of runouts are always very difficult, Iqbal, to figure out.
1: जी हाँ, और ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि शायद ओनिचा ही हैं जिनको आज इनका विकेट गिरेगा, क्योंकि जैसा आपने बताया पंकज की बल्लेबाज जो उधर से आ रही थी स्ट्राइकर एंड से, उनको क्रॉस नहीं किया था ओनिचा ने, और ऐसे में साफ तौर पर यही लग रहा है कि विकेट जो है ओनिचा का जाएगा। नानापत अभी भी बच जाएंगी, नंबर तीन पर आई थी बैटिंग करने के लिए और अंतिम जोड़ी के रूप में भी उनके साथ साझेदारी बनाई जाएगी।
0: लेट्स सी द अंपायर इज ट्राइंग टू फिगर आउट देयर वॉचिंग द यस ओनिचा हैज टू वॉक बैक। सो व्हाट वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट वाज मोर ऑर लेस करेक्ट एंड थाईलैंड लूज देयर नाइन्थ विकेट। ओनिचा इज आउट विदाउट ओपनिंग एन अकाउंट। दैट मींस इंडिया आर जस्ट वन स्टेप क्लोजर टू रजिस्टरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बिग विक्ट्री इन देयर फर्स्ट मैच एट द एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप एट Dubai International Stadium. So Harmanpreet Kaur will be happy with the bowling performance, there's no doubt about it. Fielding definitely scope for improvement, but middle order batting is what needs improvement. That's what the doctor has ordered for India. But the fact remains that T20 format is also very frugal, you know, it becomes very difficult on occasions to adjust. But Nanapath on strike, Kranti Gaur bowls it outside the off stump, trying to kind of drive it away from a body, doesn't connect. And Tipacha is the last player who has come out for Thailand. The 16th over is in progress. Good to see that India probably will not allow Thailand to play all the 20 overs. Very important, as the last player out was Onicha, was run out by Smriti Mandhana. Big shot there by Nanapath. She goes over mid-on. She gets a boundary. And she continues her good run. She definitely deserves a half century, Iqbal. She is on 40 right now. And she really has played her heart out today. And she's the lone warrior as far as Thailand is concerned.
1: Yes, yeah, team ka score 64 run hai. Aur usme se akele Nanapath ke 40 run hai. Sabhi khiladiyon ne mil karke 14 run. Usme extra ke bhi run hai. To aap andaza laga sakte hain ki ye India versus Thailand nahi. Ye Nanapath versus India ka match ho raha hai. Ek लौती खिलाड़ी हैं जो खड़ी हो पाई हैं, वरना सभी खिलाड़ी ने हथियार डाले हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया इस गेंद को, पॉइंट पर सिंगल मिल गया और इस सिंगल के साथ नानापत अब पहुंच गई हैं 41 पर 65 थाईलैंड 9 विकेट के नुकसान पर। दो गेंदें इस ओवर में बची हुई हैं, क्रांति गौड़ के पास मौका है थिपाचा का विकेट लेने का।
0: यस, एंड इफ क्रांति कैन फिनिश इट ऑफ इन दिस पर्टिकुलर ओवर दैट विल बी वेरी वेरी गुड। विल बी सॉर्ट ऑफ एन आइसिंग ऑन द केक एंड इंडिया विल बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट इफ दे आर एबल टू फिनिश इट ऑफ इन दिस पर्टिकुलर ओवर व्हिच इज द 16th ओवर ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिंग्स। नानापत एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड ऑन 41, थिपाचा द लास्ट प्लेयर हु हैज कम आउट, एंड थिपाचा पुथावांग is the player, 65 for 9. Thailand Kranti Gaur bowls, trying to just glide it towards third man area, doesn't connect, and this will be great learning for the Thailand girls, there's no doubt about it, because they've been playing a lot of T20 format matches, but mostly with the associate nations and the lesser known teams. They don't get too much of a chance apart from these kind of tournaments to play against a team like India, Pakistan and other ones, which is very very important. Quick ball zipping past the bat of Thipacha, who had no clue whatsoever, beating the outside edge. End of over number 16. 65 for 9 is what Thailand have made. So it's a brave attempt from Thailand, Iqbal. But the fact remains that India sharpening the bowling. And I guess if you look at all the teams, I guess India has the best bowling attack, if I may say so, in this particular Asian championship. And they are really working hard on that. So can India continue? Is this a good start for them? Because if they win, this will be a big, big victory for India.
1: निश्चित तौर पर। अब गेंदबाजी करने के लिए दीप्ति शर्मा को बुलाया जा रहा है पारी का 17वां ओवर लेकर के। इस पूरी इनिंग्स में नानापत को छोड़कर के कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंच पाई हैं थाईलैंड की तरफ से। 9 विकेटें गिर जाने के बावजूद भी हम ये कह पा रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंची है, सिर्फ नानापत ही ने दहाई का आंकड़ा छुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कमजोर थाईलैंड की बैटिंग रही है। दीप्ति शर्मा इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आ रही हैं। 17वां ओवर है पारी का, क्या ये पारी का अंतिम ओवर हो सकता है? नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद रूम बनाकर कट करने की कोशिश, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का डाइविंग कैच और इसी के साथ भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है। 94 रनों से थाईलैंड को पराजित कर दिया है। एशिया कप विमेन्स एशिया कप के भारत ने अपने पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की। इस मुकाबले में भारतीय टीम 94 रनों से जीत हासिल कर रही है और एशिया कप के इतिहास में भी दीप्ति शर्मा अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। 29 विकेटें इसी विकेट के साथ एशिया कप में अब दीप्ति शर्मा के विकेट्स की संख्या हो गई है और निश्चित तौर पर एक बहुत ही बढ़िया दिन रहा है दीप्ति के लिए। 150वां मुकाबला बहुत यादगार रहा है। तो जाते जाते आपको बता दें कि आज के मुकाबले में टॉस जीता थाईलैंड की कप्तान ने, टॉस जीत करके उन्होंने भारत को पहले बैटिंग करने के लिए कहा। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 159 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर और जवाब में थाईलैंड की टीम 16.1 ओवर में 65 रन बना करके ऑल आउट हो गई और इस तरह से भारत ने विमेन्स एशिया कप 2026 में 94 रनों की जीत के साथ एक धमाकेदार आगाज किए है। तो इसी सूचना के साथ मैं मोहम्मद इकबाल, अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले, स्कोरर रजित सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन ओपी शर्मा के साथ आप सभी को स्टूडियोज वापस लिए चलता हूं, जहां से आप सुनेंगे पोस्ट मैच कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच। आइए
3: Player of the match. India opened their campaign in the Women's Asia Cup 2026 with a statement issuing thumping 94-run win. Hello and welcome to Player of the Match. I am Megha and joining me in studio as my co-host is Gautam. We've got former Indian cricketer Latika Kumari and senior sports journalist Rakesh Thapliyal.
4: और ये मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी था because आगाज कहीं ना कहीं एक जीत के साथ किया है टीम इंडिया ने और वो कंपैरिजन 66-74 और अब फाइनली ये जो डिस्टेंस हमें देखने को मिला है इसने एक अलग कीर्तिमान सेटल कर दिया है बिकॉज हाँ शुरुआत में कहा जाता है कि शुरुआत अगर भली होती है तो सब भला होता है लेकिन जिस तरीके से परिणाम हमारे सामने है बहुत ही बढ़िया। एक्साइटेड हम सब हैं, कुछ कहेंगे मैम आप?
5: बहुत जरूरी होता है जब कोई टूर्नामेंट हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से पहला मैच हमारा जाता है, कौन कौन से बॉक्स हम टिक करते हैं। तो आज मैं ये कहूंगी कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक अच्छा क्रिकेट खेला है, एग्जीक्यूशन अच्छे हुए हैं, बट फिर भी यहाँ से आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि आपका मिडल ऑर्डर कैसा खेल रहा है कि लास्ट में आके जो रन्स आने चाहिए वो आज के मैच में उतने आए नहीं है। तो मुझे लगता है कि बैटिंग में अभी भी काम करना बाकी है।
3: बिल्कुल। और राकेश अगर हम यहाँ पर फील्डिंग की बात करें तो जब दीप्ति शर्मा ने स्लिप्स में वो कैच छोड़ा डेजा वू सा लग रहा था लेकिन उसके बाद से काफी इम्प्रूव फील्डिंग शो देखने को मिला। मंदाना का डायरेक्ट हिट, शिफाली वर्मा का वो डाइव, इस तरह के कई एफर्ट्स देखने को मिले।
6: देखिए अच्छी चीज है, ये लग रहा है कि भाई कैंप के अंदर जो काम हुआ है फील्डिंग के ऊपर वो दिखाई दे रहा है, बॉलिंग पे काम दिखाई दे रहा है। हालांकि जो आपके बैटर्स हैं वो ऐसे इतने बड़े लेवल के नहीं थे कि जिसमें हमारी बॉलिंग की परीक्षा हो, लेकिन जो लाइन एंड लेंथ की बात है वो उसमें अच्छे हमारे बॉलर्स रहे हैं। और आपने देखे 9 ओवर में 44 रन पे 6 विकेट उनके गिर गए थे तो मैच तो वहीं खत्म हो गया था। पहले 10 ओवर में हम अच्छा खेले और वो पहले 10 ओवर में अपनी बैटिंग में खराब खेल के उन्होंने मैच हाथ से निकाल गया। देखो क्या होता है कि ये एक 40 ओवर का मैच है, 2020 का मैच है, तो कोई भी आपकी तैयारी जो होती है वो 40 ओवर के लिए होनी चाहिए, है ना। पहले 20 ओवर में आप अच्छा खेले थाईलैंड, लेकिन उसके बाद वो एक कंप्लेसेंसी उनके अंदर दिखाई दी, बैटिंग में वो डेप्थ नजर नहीं आई एक उनकी एक बैटर को छोड़ के, और कोई भी जो है डबल फिगर में नहीं आ पाया। और हिंदुस्तान की तरफ से ये अच्छी बात है कि हमारे एक्स्ट्रा भी कोई डबल फिगर में नहीं हुआ, एक एक्स्ट्रा रन गया तो एक अच्छी बात है, वो भी वाइड का। तो मुझे लगता है कि बॉलर्स ने हमारा अच्छा किया। थाईलैंड की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हमें शुरुआती झटका दे दिया और ये झटका हमें आगे के मैचों में काम आएगा।
4: डबल नहीं, वेल ट्रिपल की हम बात करेंगे, जिन्होंने किया है अपना कर्मा। दीप्ति शर्मा 3 विकेट लिए, एक मिडन ओवर भी, एक मिडन ओवर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
8: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
9: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया।

0: इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia. Later, at a joint press conference with the Uzbekistan President, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है. आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे. हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है. इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा.
1: On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliye Darjali Dostlik, by President Shavkat Mirziyoyev. Prime Minister Modi dedicated the accolade to the 1.4 billion people of India and highlighted that it is a symbol of the enduring friendship between the two civilizations. Mr. Modi reached Tashkent yesterday on a two-day visit to Uzbekistan. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi today shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani. In his address, Prime Minister Modi strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. The Prime Minister also championed women-led economic empowerment through the PM Swanidhi scheme, with nearly 35 lakh females across the country using the scheme to expand their businesses. Defence Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defence sector and witnessing a major transformation in its defence industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh today. Nepal has issued fresh alert for flood in Bhotekashi River. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority, NDRRMA of Nepal, has urged residents living along the river's banks in Rasuwa, Nuwakot and Dhading districts to remain cautious following a rise in its water flow. The warning comes as the death toll from flash floods that struck the Nepal-Tibet border on Wednesday rose to 781. NDRRMA said 8,186 people have been evacuated so far from the affected districts, including 227 foreigners. Over 2,500 people are still missing following the disaster. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaswal said 149 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following the tragedy. India is continuously supporting the relief and rescue operation in flash flood hit Himalayan nation. The government has debunked a post circulating on social media which claims that NEET PG exam question papers were leaked in Jaipur. And that is the end of this news bulletin.
3: Was holding, we didn't play good shots, but I think overall it was a good game for us.
4: 10 overs, 101 for 2, and the next 10 overs, 58 for 7. You put it down to reckless batting or good bowling and good fielding by Thailand?
3: I think with new ball was coming nicely on the bat, but after that there was a bit hold, and even as I mentioned, our batters, all of us, we didn't play good shots, but I think at the same time I would like to give credit to the Thailand bowlers also. They were also, you know, tried to ball those areas where it was easy, not easy to hit the ball. So I think both way, they also bowled well, and we also didn't execute ourselves well in the middle.
4: That was going to be my next question. How impressed are you the discipline that Thailand shows with the ball as well as in the field?
3: Yeah, I've been telling that, you know, all the teams we are playing in Asia Cup, they have shown a lot of improvement, and we always talk about, you know, this tournament is something where we can't take any team lightly, because we have seen the massive improvement, and I think they have shown us, you know, there is nothing you can take easily, you have to work really hard.
4: A few words about Shefali Varma as well as Deepti Sharma, who's played 150th game.
3: Yeah, I mean, both of them are key players for us. Shefali is somebody who is doing well. Good to see, you know, she's getting that rhythm in the batting and scoring those crucial runs for us. And Deepti is somebody who has got a lot of experience, a lot of wickets behind her. And I think today also she used her experience.
4: Very well done today. All the best for you as well next game.
3: Thank you so
4: much. Thank you, Harmanpreet. Thanks for talking to us. That's it from the post-match presentation.
5: Well, जीत लो हर लम्हा बीच जाने से पहले लौट कर फिर यादें आती हैं. वक्त नहीं और वक्त हमारा है, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी हमने देखा कि किस तरीके से कमाल किया है शेफाली वर्मा ने 64 रनों की पारी खेली. और शुरुआती दौर में जब आपको पता है कि एक खिलाड़ी जो आपके साथ ओपनर आया रन आउट होकर चला गया, तो ऐसे में दबाव कितना होता है, कितना प्रेशर होता है?
6: देखिए, दबाव कहते हैं इस मैटर ऑफ इंजॉयमेंट है. क्रिकेट आप खेल रहे हैं इंजॉयमेंट के लिए, दबाव के लिए कोई नहीं खेलता. और जब एक बड़ी प्लेयर आउट होती है तो दूसरी प्लेयर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे आती है, और शेफाली वर्मा ने वो दिखाया राइट फ्रॉम द 50 ओवर वर्ल्ड कप. हम देख रहे हैं कैसे उनको सेमीफाइनल में लाया गया था, सेमीफाइनल फाइनल में उन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन किया. इसी वजह से आज वो इस टीम का हिस्सा है और इतना बड़ा उनका नाम है. जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले तो बड़े इंटरेस्टिंग शॉट्स खेले उन्होंने, बहुत जबरदस्त. अच्छा लग रहा था कि अच्छे निक में लग रही थी शुरू से ही, और लेकिन वो आउट जो हुई है, आउट बहुत खराब हुई है. आज उनके पास मौका था. जब एक टीम में आप सेट हो जाते हैं उसके बाद आपको बड़े स्कोर खेलने की आदत डालनी पड़ती है. कई बार क्या होता है कि 50-60 रन बना के आपके अंदर एक कंप्लेसेंसी आ जाती है, या उस बॉलर को बहुत लाइटली आप लेने लगते हैं. तो जिस तरीके से वो आउट हुई, वो आउट होना उनका बहुत खराब था, लेकिन इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी खेली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेली. पारी को जो संवारना उन्हें आता है वो एक आर्ट है. देखिए, वो आर्ट थाईलैंड के बल्लेबाजों में कहीं नजर नहीं आई, उनके एक बल्लेबाज को छोड़कर बाकी किसी के अंदर वो चीज नजर नहीं आई. और शेफाली वर्मा तो देखिए, अच्छी फील्डिंग में भी वो अच्छा प्रदर्शन करती है, बल्लेबाजी में जिस तरह, और जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ शॉट खेलती है ना, उनके शॉट गेंदबाजों के हौसले पस्त करने वाले होते हैं. वो एक बड़ी चीज है कि किस तरीके से आपको फायदा उठाना है पावर प्ले का, कैसे जो है आप पिच ड्राइव खेलने हैं, वो सारी चीजें उन्होंने दिखाई दी. और उनके शॉट्स में अच्छी एंटरटेनमेंट भी होती है, क्योंकि लोग तो स्टेडियम में ज्यादा नहीं थे, लेकिन क्रिकेट जो है वो एंटरटेनमेंट भी है, आपको एंटरटेन भी करना है. तो ऐसे आपने इनिंग खेली कि जिसमें लोग एंटरटेन भी हुए, आपकी टीम को भी फायदा मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आप खेले, अच्छी एक पार्टनरशिप आपने लगाई प्रतीक रावल के साथ, तो वो एक टीम के लिए बड़ा योगदान देके गई. वरना बड़ा लॉस हो सकता था. 10 ओवर में हम 100 रन पे कुछ ज्यादा रन बना पाए थे, उसके बाद अगले 10 ओवर में हम बिल्कुल ढह गए.
7: जी बिल्कुल. और 19-30-20 आई अर्धशतक उन्होंने जड़ा. एक बात कही वहां पर दोनों कप्तान हरमन और उसके अलावा शेफाली वर्मा ने भी कि देयर वाज होल्ड इन द विकेट. लतिका, उसके बाद लगा ऐसे जो बल्लेबाज आए हैं, कंडीशन का क्या सही उन्होंने आकलन किया था, क्योंकि दे वर गोइंग फॉर देयर शॉट्स?
8: बिल्कुल. और देखिए, हम भी ये बात कर रहे थे कि मैच देख रहे थे जब कि थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है बॉल वहां पर, और जो हमारे बल्लेबाज हैं या तो वो बॉल को जज नहीं कर पा रहे थे, और बॉल थोड़ा डिप करके जा रहा था. तो डिप जब बॉल करता है ना, तो थोड़ा कदमों की चहलकर्मी दिखानी पड़ती है. तो वहां मुझे लगता है कि

0: मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा था बल्लेबाजों का, जिसकी वजह से डॉट बॉल्स का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉल को सही तरीके से आप जज करते हैं, डिसीजन सही तरीके से लेते हैं किसी भी शॉट को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो आपको आगे आने वाले इनिंग्स में भी हेल्प करेगा। तो स्पिनर्स जब बॉल डाल रहे हैं, बॉल होल्ड कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको अटैक करेंगे स्पिनर पे, तो ज्यादा आसानी होती है खेलने में, रादर देन आप विकेट में रहकर, क्रीज में रहकर गेंदबाजों को खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रिप कर रही है, सतह जो ग्रिप करती है गेंद को, तो वो कहीं ना कहीं हलचल करती है, और वो हलचल बल्लेबाजों को काफी परेशान करती है।
1: देखिए, हलचल काफी अच्छी है, लेकिन आने वाले मुकाबलों की अगर बात करें तो वहां पर भी मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और क्लिक करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके जहन में भी होंगे, उनके जवाब शायद राकेश जी बेटर तरीके से दे सके कि आज शिफाली वर्मा चली, बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने भी हमारे श्रोता थे या जितने भी मैच लोग देख रहे होंगे कि हाँ, किसी और का क्लिक होना भी बहुत जरूरी था।
2: देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ हमेशा से कि आप वक्त की नजाकत के हिसाब से खेलें। आप वक्त की टीम को जरूरत क्या है उसके हिसाब से आपको खेलना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्रिकेट में कहते हैं कि दो विकेट जल्दी जल्दी मत जाने दो। हमारे साथ दो बार ऐसा वाकया हुआ कि एक एक ओवर में हमारे दो दो विकेट गिरे, और वो खराब शॉट सिलेक्शन था। हरमनप्रीत जो हमारी कप्तान है, उन्होंने भी बोला कि खराब शॉट्स हमने खेले जिसकी वजह से विकेट गंवाए। तो आपको इंटरटेनिंग खेलनी है, प्लस टीम की जरूरत के हिसाब से। तो जो ये नए खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के अंदर, देखिए टैलेंटर एक बहुत पुरानी चीज है, आज वो चीज मुझे तो खत्म होती दिखती है। हम किसी को टैलेंटर नहीं मानते, टैलेंटर कहना पहले एक थोड़ा सा खिलाड़ी का एक अपमान सा माना जाता था, लेकिन आज हर खिलाड़ी को योगदान देना है। जो निचले क्रम का गेंदबाज भी है तो उसको भी तैयारी कराई जाती है कि आपको 10-15 रन का योगदान कैसे आप दे सकते हैं, जरूरत के हिसाब से खेलना है। दूसरा बल्लेबाज अच्छा कर रहा तो आप उसको चांस दीजिए, सिंगल लेके उसको मौका दीजिए। ये सारी चीजें जो पारी को संवारने में काम आती है वो हर खिलाड़ी को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि देखिये आपको यहाँ पर टीम के लिए खेलना है, प्लस अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी को भी दिखाना है। अगर आप अच्छी एबिलिटी के साथ प्रदर्शन करेंगे तो उसका टीम को भी फायदा मिलेगा, लेकिन आप अच्छी एबिलिटी पिच पे जाके नहीं दिखाएंगे तो वहां आपको कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान होगा, टीम को भी नुकसान होगा।
3: और लतिका, जितनी बल्लेबाजी डीप हो, मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं, उनके पास भी कॉन्फिडेंस होता है अपनी रणनीति बनाने का कि कुछ अगर जरूरत पड़े तो नीचे से कंट्रीब्यूशन आ सकता है।
0: देखिए, बिल्कुल आपके पास प्लेटफॉर्म एकदम सज गया था, ऊपर जो आपके ओपनर्स थे उन्होंने अच्छी खासी वहां पे बल्लेबाजी की, आपको ये दिखाया कि इस विकेट पे किस तरह की शॉट सिलेक्शन जो है आप करके इनिंग को आगे लेके जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब ऐसे बॉल थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप स्ट्राइक रोटेट इनिंग के बीच में कर सकते हैं, तो डॉट बॉल्स का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा और आप बड़े शॉट्स की तरफ नहीं देखेंगे उस टाइम पे। क्योंकि जितने भी हमारे, अगर फुलमल्ली की बात कर ले हम, दीप्ति शर्मा हो गए, ऋचा घोष हो गई, ये सब एक बड़े हिट को लगाने के वजह से जो है अपना विकेट गवाया इन्होंने। तो मुझे लगता है जब आपके पास ऋचा घोष 13वां ओवर में आ गई थी अंदर, उनके पास 7 ओवर थे, वहां से अराउंड 40-40 बॉल्स उनके पास थी खेलने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको वहां इनिंग बिल्ड करना आना चाहिए अपने पार्टनर के साथ बात करके। क्योंकि जिस तरह गेंदबाजी हो रही थी, कहीं ना कहीं आपको एक या दो गेंदे ऐसी मिल रही थी जो आप बड़े शॉट में उन गेंदों को कन्वर्ट कर सकते थे। तो एक टेम्परामेंट आपका कैसा है उस टाइम पर बल्लेबाजी करते हुए, और किस तरीके से, जैसा कि हरमन ने भी कहा कि आपके शॉट सिलेक्शन क्या है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं एक गेम को एक अच्छे नोट पे फिनिश करने के लिए, जहां 20-25 रन थोड़ा पीछे रह गए।
1: और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मौके जरूर मिले थे थाईलैंड को कैचेस के, लेकिन वहां पर वो कैचेस ड्रॉप हुए थे और वो सीधे सीधे कैचेस थे। राकेश जी कुछ कहेंगे इस बारे में?
2: वो उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर उस तरीके का होता कि क्या होता है कि आउटफील्ड में जब आप खड़े हैं या इनर सर्कल में खड़े हैं, थोड़ा स्टार्ट आपको लेना पड़ता है, थोड़ा झुक के चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोचिंग स्टाफ उन तक वैसी उनको कोचिंग उस तरह की नहीं दे पाया, या उनको बताया गया तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि एक प्रैक्टिस में चीजें करना अलग बात होती है, और मैच के अंदर जब बड़ी खिलाड़ी जिनका नाम हो, जिनके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है, तो उनके खिलाफ जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उस चीज का दबाव रहता है। तो वैसे ही मतलब फुर्ती इतनी उनमें नजर नहीं है, लेकिन आप देखिए जब सेकेंड हाफ में वो कैच पकड़ने लगे तो उन्होंने कैच पकड़े, बाद में उन्होंने दिखाया, हालांकि वो थोड़े आसान कैच थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर डिफिकल्ट कैचेस भी आपको पकड़ने पड़ते हैं।
3: लतिका, अब हम शो के समापन की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो वापस से भारतीय गेंदबाजी पर जिक्र करते हुए चलते हैं। खास करके पेस अटैक,

0: जिसपे बहुत सवाल उठ रहे थे, आज जो जवाब मिले हैं शायद कंक्लूसिव जवाब नहीं है, लेकिन जिस तरह से नंदिनी ने शुरुआती स्पेल में मूवमेंट का इस्तेमाल किया और उसके बाद समझदारी से स्लो ओवर्स का इस्तेमाल किया।
1: देखिए बिल्कुल, और काफी काम करना पड़ेगा अभी भी। अगर आप इससे बेहतर किसी टीम के सामने गेंदबाजी करने आते हैं, क्रांति गौड जिस तरह की गेंदबाजी करती है, नंदिनी जिस तरह की गेंदबाजी करती है, मुझे लगता है कि नंदिनी के पास जो है स्विंग करने की जो कला है उसकी वजह से वो विकेट लेने में कामयाब होती रही हैं। सही लाइन और लेंथ पे अगर गेंदबाजी करते रहेंगे, वहां मेहनत करते रहेंगे, तो आपको और सफलताएं मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि आज विकेट उनके खाते में आए, और बहुत टाइम के बाद ये विकेट देखा है हमने एक पेस बॉलर्स के, चाहे वो क्रांति गौड़ हो चाहे वो नंदिनी हो। तो अच्छा लगता है कि जब आपके अपफ्रंट आकर जो गेंदबाज हैं, जो इनिंग की शुरुआत करते हैं, वो गेंद विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले मैचेस में और अच्छे इनके जो स्टैट्स हैं वो हम देखने को मिलेंगे।
2: बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें आग हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। शंखनाद कमाल का हो गया, शुरुआत काफी भली हो गई है, लेकिन आने वाले सफर में और भी सारे हर्डल आने वाले हैं। लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन पल पल की अपडेट्स के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी समय हो गया है कि हमें जाना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
0: जी बिल्कुल, और अगली चुनौती भारत को मिलनी है 3 तारीख को हांगकांग के रूप में, हमारे विशेषज्ञों का। आपका गौतम बहुत बहुत धन्यवाद, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी प्रोडक्शन टीम का भी, माधवी, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर हमारे प्रोड्यूसर हैं, शाहनवाज खान, टेक्निकल टीम है हमारी अजय राणा, जयराम, सुशील कुमार और सचिन वत्स की। और इसके साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं और वापस आने के वादे के साथ यहां से साइन ऑफ करते हैं।
3: प्लेयर ऑफ द मैच।
4: अभी आप विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
5: You have been listening to a special program, Player of the Match, of the T20 cricket match played between India and Thailand, of the Women's Asia Cup T20 cricket tournament 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.